सुप्रभात श्रोता साथियों, सुबह की सुनहरी सफर में आप सभी का स्वागत है। आप सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज। और मैं हूँ साथियों आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर, लेकर हाजिर हो चुकी हूँ इस ताजगी से भरी सुबह में हमारे दिन के सभी कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, हर नई सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद, एक नए सपनों की किरण लेकर आती है, और हम भी चाहते हैं कि आपके दिन की शुरुआत भी हो ज्ञान, प्रेरणा और मधुर संगीत के साथ में। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत सफर की, जहां हर पल होगा खास, कुछ नया सीखने वाला और कुछ मन को छू जाने वाला, सिर्फ सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो पर। साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सुबह 6 बजे कार्यक्रम आराधना, दिन की शुरुआत हो प्रभु के नाम से। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भक्ति, श्रद्धा व आस्था से जुड़े गीतों को, जो आपके मन को शांति दे। तो आइए साथियों, ईश्वर की वंदना के साथ अपने दिन की शुभ शुरुआत करते हैं। इसी के बाद सुबह 6:30 पर होगा कार्यक्रम खेतीबाड़ी, क्योंकि किसान हमारे अन्नदाता है और उनकी मेहनत से ही जीवन की थाली सजती है। इस कार्यक्रम में हम लाते हैं साथियों खेती के नए तरीके, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की महत्वपूर्ण सलाह को, ताकि खेतों में हरियाली बढ़े और किसानों के चेहरे पर मुस्कान खिले। इस कार्यक्रम को लेकर आती है हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। सुबह 7 बजे श्रोता साथियों हम प्रस्तुत करेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, नन्हे मुन्ने श्रोता साथियों के साथ जहां होंगी रोचक कहानियां और ढेर सारी मस्ती। यह कार्यक्रम बच्चों की दुनिया को ज्ञान और संस्कार के रंगों से सजाता है। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं, और मेरे साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। साथियों, इसी के बाद हम रुक करेंगे सुबह 7:30 पर, आप सुनेंगे कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही देश की असली शक्ति है। इस कार्यक्रम में मिलेंगी करियर से जुड़ी जानकारियां और नए विचारों को मंच, ताकि हर युवा अपने सपनों को नई उड़ान दे सके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर, और मेरे साथ होंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों सुबह 8 बजे प्रस्तुत होगा कार्यक्रम सच्चा स्वराज, क्योंकि स्वराज केवल स्वतंत्रता का प्रतीक नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता और जागरूकता का संदेश भी है। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे स्वतंत्रता सेनानियों की गाथाएं और आजादी के सही मायने। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी जागृति भट्ट और उनके साथ होंगी प्रस्तुतकर्ता अंजलि पाराशर। इसी के बाद दोस्तों हम रुक करेंगे धरती की खुशबू, संस्कृति की मिठास और परंपराओं की ओर। लोक संगीत में बसती है हमारी मिट्टी की पहचान, तो तैयार हो जाइए साथियों ढोलक, बांसुरी, मंजीरे की मधुर धुनों पर झूमने के लिए कार्यक्रम लोक संगीत में। इसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 8:30 पर। इसी के बाद दोस्तों हम फिर से बढ़ेंगे अगले कार्यक्रम की ओर सुबह 9 बजे, और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। दोस्तों इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, जिसे आप सभी सुनेंगे ठीक सुबह 9:30 पर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप जानेंगे साथियों हमारे जीवन से जुड़ी समस्याएं और उनके समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट। इसी के बाद दोस्तों अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर, क्योंकि पुराने नगमों की मिठास और नए गीतों की ताजगी ही हमारे मन को सुकून देती है। तो श्रोता साथियों तैयार हो जाइए आपकी पसंद के सुपरहिट फिल्मी तरानों के लिए, जो आपके दिल को छू जाएंगे। तो श्रोता साथियों, जैसा कि रूपरेखा कार्यक्रम की आप जान ही पा रहे हैं, अब समय है सीधे आपसे जुड़ने का और आपकी बात सुनने का, कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में, जहां आप सभी सुनेंगे आपकी राय, आपके अनुभव और समाज से जुड़ी बातों को। इसी के आगे साथियों दोपहर 11 बजे से 1 बजे तक प्रस्तुत होगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश, जो है सिर्फ आपके नाम। इस कार्यक्रम में बजेंगे वही गीत जो आपके पसंदीदा होंगे। आप अपनी फरमाइश और संदेश के लिए हमें व्हाट्सएप SMS कर सकते हैं साथियों हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234। तो साथियों जुड़े रहिए सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो के साथ में, क्योंकि यहाँ आपकी आवाज ही है सबसे खास। तो श्रोता साथियों, यह तो थी आज की प्रातःकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। आइए अब शुरुआत करते हैं आज की सुनहरी सुबह की कार्यक्रम आराधना से।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा?
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: ભાઈ બનો ગીત તો આશુ પૂરું અને ગીત બાદ એક વખત ફરી આપ સબનું સ્વાગત કર હું અમારે આજને કાર્યક્રમ ખેતીવાડી મેં જેમ કે ગીત કે પહેલે મેં આપને વિશે બતાડ્યું હતું કે આજે આપણે વાતચીત કરવા વાળા હું કે આપણે જે જંગલ હે એ ખતમ થવા લાગી ગયા હે એને સાથે આપણે નદી હુકાઈ ગઈ હે ને અગર આપણે હવે ભી નહીં હમરે તો આપણી જે વિરાસત હે એ ભી નહીં વસેગા તો આના વિશે માટે વાતચીત કરવા બદલે આજે આપણે કાર્યક્રમ તકી જોડી રહી હે પટેલજી તો સૌથી પહેલે આપણે હમરી લેણાની વાત અને મોરે કરા આપણી વાતે સર નમસ્કાર
1: નમસ્કાર
0: સર આપકા બહોત બહોત સ્વાગત કરતી હું મેં વાગડ રેડિયો પરિવાર મેં
1: ધન્યવાદ
0: સર જૈસા કી આપ હમારે કાર્યક્રમ ખેતીવાડી સે નિરંતર જુડતે રહેતે હૈં ઓર ખેતી સે જુડી વિશેષ જાણકારી આપ હમારે કિસાન ભાઈ બહેનો કો દેતે હૈં આજ હમારે કાર્યક્રમ મેં હમારે શ્રોતા સાથીઓ સે બાતચીત કા વિષય જુડને જા રહા હૈ કે જંગલ ભી હમારે ચલે ગયે હમારી નદિયાં ભી હમ દેખ રહે હૈં કે બહોત સે બાર સૂકને કી કગાર પર આ જાતી હૈ તો એસે મેં યે ભી એક સમય હૈ હમારે લીએ કે હમ હમારી ચીજો કો બદલે હમ હમારે જીવન મેં સુધાર કરેં અગર હમને અભી ભી ઇન સારી ચીજો કો અનદેખા કર દિયા તો એક દિન એસા આયેગા કે હમારી વિરાસત ભી હમારે પાસ નહીં બચેગી તો આપ સબસે પહેલે હમ યહી બતાઈએ કે જંગલ નદી કિસ તરીકે સે હમારી વિરાસત હૈ વિરાસત ક્યા હૈ ઓર ઇસકા હમારે જીવન મેં ક્યા મહત્વ હૈ
1: બિલકુલ વાગડ ક્ષેત્ર કી બાત કરેં તો હમારી વિરાસત ક્યા હૈ જો જંગલ હૈ જમીન હૈ પેડ પૌધે હૈ યે સબ હમારી વિરાસત હૈ
0: બિલકુલ
1: અપન જાનતે હૈ કે જૈસે જુલાઈ મહિના આ જાતા હૈ પૂરા વાગડ જૈસે ફિર સે જી ઉઠતા હૈ
0: બિલકુલ
1: એસા અપન કો લગતા હૈ સુખી પહાડિયાં હરી ચાદર ઓઢ લેતી હૈ ને ખેતો મેં હલચલ મચને લગતી હૈ મહિલાએ ધાન કી રોપાઈ કરતી હૈ મક્કી કી બુવાઈ કરતી હૈ ઓર જૈસે બચ્ચે ભી બારિશ મેં ભીગતે હુએ કીચડ મેં ખેલ કૂદ કરતે હુએ
0: યે
1: જો નજરા હોતા હૈ वो नजारा वास्तव में एक बहुत आनंद रूप हो जाता है ये जो नजारा देखते ही अपन को महीने से जो सूखी धरती की जो पहली बारिश के बाद ऐसी महकती है कि हर किसान उस चेहरे की उम्मीद की मुस्कान आ जाती है अपन को पहली बारिश में पता चलता है ये जो मिट्टी की जो महक है ना ये बहुत आनंद दिलाती है लेकिन જો વિરાસત હૈ ખાસ કરકે હરિયાલી કી વિરાસત હૈ પૌધો કી વિરાસત હૈ પહાડીઓ કી વિરાસત હૈ જૈસે પહાડીઓ મેં અલગ અલગ જો પેડ પૌધે હૈ ખીલ ઉઠતે હૈ સાગવાન કી બાત કરે સાલ કી બાત કરે બાંસ કી બાત કરે મહુઆ ખેર પલાસ જૈસે પેડ પૌધે લહેરાતે હૈ
0: બિલકુલ
1: ભઈ યે હમારી વિરાસત હૈ કેવલ યે પથ્થર ઓર ઝાડિયાં જબ અભી અપન દેખતે હૈ હે ને ઓર જબ જિસ પહાડ કે ઉપર કોઈ પેડ પૌધા નહીં હૈ વહાં સિર્ફ સફેદ પથ્થર ચમકતા હૈ તો અમારી વિરાસત ખતમ હો જાતી હૈ તો ઇસી કો અપન વિરાસત બોલતે હૈ કે જહાં નદિયાં હૈ ઝરણે હૈ ઓર પેડ પૌધે હૈ પહાડ હૈ યે વિરાસત બચાએ રખના બહોત જરૂરી
0: બિલકુલ સર આપને સહી કહા ક્યોંકિ હમ દેખતે હૈ કે હમારી જો વિરાસત હૈ વો હમારે મન કો સુકૂન દેતી હૈ ઓર વહી અગર હમારી જો યે પેડ પૌધે હૈ જો લહલહાતે હુએ હમારે પશુ પક્ષી હૈ ये हमें नहीं दिखेंगे हमारी जो परंपरागत चीजें हैं वो हमें नहीं दिखेंगी तो हम देखेंगे कि हमारी जो विरासत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी तो जिस तरीके से हमने जंगलों को खोया है नदियों को खोया है उस तरीके से हमें हमारी विरासत को नहीं खोना है अब यही बात आती है कि हमारे जंगल और नदी का क्या रिश्ता है
1: बिल्कुल अपन ने अपनी विरासत की बात करी और जंगल और जो नदी की अपन बात करें तो बच्चा जैसे पूछता है कभी कभी कि मम्मी मम्मी ये नदी कहाँ से आती है
0: जी हाँ
1: तो अपन बोलते हैं कि भी नदी तो पहाड़ों से आती है ये वास्तव में ये सही बात है लेकिन पूरी बात सही नहीं है सच ये है कि नदी जंगल की गोद से जन्म लेती है क्योंकि जंगल है तो वहां पानी है जो जंगल है वही ये જો નદી કા મતલબ એ જન્મદાતા જિસકો બોલતે હૈ ના જૈસે માં પાલન પોષણ કરતી હૈ વૈસે હી જંગલ નદી કો જન્મ દેતી હૈ યદી જંગલ નહીં રહા તો નદિયા ખતમ હો જાતી હૈ
0: બિલકુલ
1: જહાં પેડ પૌધે હૈ વહાં હી પાણી હૈ ઓર જહાં પાણી હૈ વહાં સે હી નદિયા ચાલુ હો જાતી હૈ જો તેજ બારિશ હોતી હૈ ઓર ઘને જંગલ હોતે હૈ ઓર ઉસ ઘને જંગલ કે અંદર જબ બારિશ ભલે કિતની ભી તેજ હો લેકિન ઉસકે ઉપર જબ પાણી ગિરતા હૈ તો પહેલે પત્તો કે ઉપર ગિરતા હૈ ફિર ધીરે ધીરે ધીરે ધીરે વો નીચે જમીન પર આતા હૈ ઓર મહિનો તક વો પાણી જમીન મેં ઉતરતા હૈ ઓર નદી છોટે છોટે નાલો મેં બહે કે ફિર આ જાતા હૈ
0: બિલકુલ
1: ઓર લેકિન જહાં નંગે પહાડ હૈ વહાં બારિશ યદી બહોત આ ગઈ તેજ બારિશ આ ગઈ તો વહાં ખાદ મિટ્ટી પોષક તત્વ સબ બહે ચલા જતા હૈ
0: જી જી
1: તો ધરતી કે અંદર બહોત કુછ હૈ ઇસકો બચાએ રખના अपना कर्तव्य है और उसको नंगा पहाड़ नहीं बनाना है। जहाँ बताया गया है ना कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहीं ही पानी आ जाता है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। जैसा कि आपने जंगल और नदी का रिश्ता हमें बताया है, वही अब मैं जानना चाहूंगी कि हमारे जीवन में ये जो जंगल और नदी है उनका हमारे जीवन, खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है।
1: महत्वपूर्ण चीज ये है कि जब जंगल नहीं रहा तो खेती और अपनी संस्कृति पर बहुत फर्क पड़ने वाला है। आदिवासी का जीवन डोर जो है, जो जंगल, नदी, पहाड़, मिट्टी, पशुधन, बीज जैसी चीजों से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल।
1: और इनमें से ये जो कड़ी, कोई भी एक कड़ी कमजोर हो जाती है इसमें से, तो उसका असर पूरा उनके जीवन पर पड़ता है।
0: जी हाँ।
1: और ये केवल पर्यावरण का नहीं, जीवन और संस्कृति जो है वो भविष्य का संकट बन जाता है। तो इसको बचाए रखना बहुत जरूरी है। खेती पर तो साफ असर दिखाई देता है। किसान बताते हैं कभी कभी कि पहले जैसी बारिश क्यों नहीं आ रही है ना। तो बारिश, जैसे कभी तेज बारिश आ जाती है तो मिट्टी वहां से ले जाती है।
0: जी जी।
1: कभी हम तो अभी अपन देखते हैं, अभी की बात करते हैं तो काफी बारिश ने बहुत लंबा समय ले लिया।
0: जी जी।
1: अपनी फसल सूखने की ओर आ रही थी, तो यदि अभी 5-7 दिन बारिश नहीं आ जाती तो फसल पूरे पूरी सूख जाती।
0: जी हाँ।
1: तो किसान भी यही कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, पहले तो बहुत बारिश आती थी, 120 दिन बारिश आती थी, और बारिश मतलब धान पूरे पूरा अच्छा हो जाता था, फसलें बहुत लहलहाती थी, और अभी अभी अपन देख रहे हैं कि जब फसल सूखने की तैयारी होती है इतना लंबा समय के बाद बारिश आती है।
0: जी हाँ।
1: तो जब बारिश नहीं होती धान, मक्का, उड़द, तिल जैसी फसलें बीच में सूखने लगती है, दोबारा बुआई करनी पड़ती है, बीज, मेहनत और समय तीनों का नुकसान हो जाता है।
0: जी जी।
1: जंगल ही खेतों के लिए खाद का बड़ा स्रोत भी है। यदि जंगल नहीं रहा तो खाद कहाँ से आएगा, क्योंकि जंगल में पेड़ पौधे हैं, पत्तियां गिरती है, पत्तियों में से जो खाद बनता है वो धीरे धीरे पानी के साथ बह के नालों में से वहां से खाद बन के तैयार होता है और वहां खेतों के अंदर आता है।
0: बिल्कुल।
1: तो ये जो पशुओं का गोबर है वो उर्वरक बनाता है। जंगल घटने से प्राकृतिक चक्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
0: जी हाँ।
1: तो प्रकृति को बचाए रखना जरूरी है। प्राकृतिक बचेगी तो अपनी संस्कृति बचेगी। तो ये सब चीज जैसे मैंने बताया थी, हर चीज को जुड़ती कड़ी है। यदि ये कड़ी कहीं ना कहीं खत्म हो गई तो आदिवासी का जीवन संकट में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है।
0: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही बात आती है कि इन सारी चीजों का हमारे समुदाय स्तर पर समाधान कैसे दिखा जा सकता है।
1: समुदाय के लेवल पर जो अपन समाधान की बात करें तो समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करना चाहिए। जंगल को काटना नहीं चाहिए। जंगल में क्या काटने की जरूरत है, जंगल में जो सूखी टहनी है, यदि जलाऊ लकड़ी काटते हो तो सूखी टहनी है, ये चीज काटनी चाहिए। यदि आप कुवाड़ा लेके पूरे पेड़ पौधे को काट दोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो जाएगा तो बारिश, आप जानते हो, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां बारिश है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहां पानी संग्रह हो सकता है। तो पेड़ पौधे बचा के रखना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल।
1: पेड़ पौधों के साथ साथ जो अपने समुदाय है उसको, ये जो अपन बात करते हैं ना कि भी रासायनिक की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इस तरह का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।
0: जी जी।
1: और इस तरह का प्रयोग करने से अपने जलवायु पर असर होती है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम प्रयोग करेंगे इतनी प्रकृति जो अपना है वो सही रहेगी, और प्रकृति सही रहेगी तो बारिश अच्छी आएगी, और बारिश अच्छी आएगी तो जंगल हरा भरा रहेगा, और जंगल हरा भरा रहेगा तो किसान की खुशहाली बनी रहेगी।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि विरासत क्या है, इसका क्या महत्व है, और किस तरीके से जंगल और नदी का रिश्ता है, और इनका हमारी खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है, और समुदाय साथी क्या क्या समाधान के तौर पर चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को?
1: मैं श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जंगल बचाने की अपन बात कर रहे हैं, जो समय पर बारिश की आवश्यकता यदि लानी है और फसल को अच्छी तरह से अपन को लेना है, फसल वापस पहले जैसा ही समय लाना है, तो अपन को जरूर हर बारिश के मौसम पे अभी हर समुदाय यदि 5-5 पौधे लगाएंगे तो काफी पौधों की संख्या हो जाएगी, और जहाँ पौधे हैं वहाँ पानी है, पानी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। पानी बचेगा तो जीवन सुधरेगा, फसल बचेगी। तो ये चीज करेंगे तो श्रोता साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी हर व्यक्ति पौधे लगाने का प्रयास करें और पौधे बचाने का प्रयास करें, काटने का नहीं बचाने का प्रयास करें, तभी जीवन सुखदायी बनेगा।
0: जी बिल्कुल सर, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: વાઇન બુનો સિમકે વડે આપણે વેસમી પાંચા ભાઈ પટેલ સાબ જોડે તક હતા ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તે કી ઘણા કની વાતે વતાડી હે એણે આપણને વતાડ્યું હે કે વિરાસત હું કહેવાય આનું હું મહત્વ હે ને હરતે જંગલની નદીનો એકા બીજા તક કી રિશ્તો હે ને એને સાથે આ જે જંગલની નદીએ હે ઈ અગર ને હોંગા તો આનું અસર આપણે જીવન ખેતી ને સંસ્કૃતિ માતે હરતે પડે હે ને સમુદાય અન મે હરતે સમાધાન ની તોર માતે ઘણા કની મોટી ભૂમિકા નિભાવી શકે। तो आशा करा हो कि हंगरी वाते आपने गमी होंगा क्योंकि अभी टाइम थी गयो है अपने अनस कार्यक्रम तक ही सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा पर जाते पहले हम रिलैक्स और कितने मोरे पड़ा सूटा।

भाईन बोनो अणस की थाती कार्यक्रम खेती बाड़ी तक अमे पड़ा सूट। आशा करा हूँ की ऐसे कार्यक्रम में अमारी आप तक जी भी बातें रही है आपने गमी होंगे। तो आपने अमारो आज नो आ कार्यक्रम केव लगे इन्हें बारा में आप अपना

0: जागृति बुन, आपने कारे सोचू है? अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था है?
1: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
0: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदी है ये हुकी जाएंगा, खेतर बंजर थे ही जाएंगा, ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा।
1: ओ अंजलि बुन, एटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
0: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है, ने आज धरती माता नु संबल है।
1: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बुन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नीर राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा।
0: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बुनो ने कहो कि पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो, जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM।

नमस्कार श्रोता साथियों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल। आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो आज भी श्रोता साथियों हमारा विषय है बच्चों में स्वस्थ दोस्ती की पहचान कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, दोस्ती बचपन के सबसे खूबसूरत यादों में से एक होती है। स्कूल का सफर, खेल का मैदान, हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतें और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ, ये सब श्रोता साथियों दोस्ती को खास बनाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों हर साथ निभाने वाला व्यक्ति सच्चा दोस्त हो ये जरूरी नहीं। कई बार साथियों बच्चे केवल समूह में शामिल होने के लिए गलत संगति का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ दोस्त उनका हौसला बढ़ाते हैं जबकि कुछ उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची दोस्ती और स्वस्थ दोस्ती की पहचान क्या होती है। श्रोता साथियों दोस्ती वह है जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, सहयोग हो, ईमानदारी हो, एक दूसरे की प्रगति को देखकर खुशी महसूस की जाए। जी हाँ श्रोता साथियों, सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी अच्छाइयों को बढ़ाए और गलतियों को प्यार से सुधारने की कोशिश करे। तो श्रोता साथियों इस विषय को लेकर हमारी आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का दस्तूर ही शुरुआत में गीत संगीत सुनाना। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी थी कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में स्वस्थ दोस्ती की पहचान कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि कई बार बच्चे केवल समूह में शामिल होने के लिए गलत संगति का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ दोस्त उनका हौसला बढ़ाते हैं, जबकि कुछ दोस्त उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है साथियों कि सच्ची दोस्ती और स्वस्थ दोस्ती की पहचान क्या होती है। स्वस्थ दोस्ती श्रोता साथियों वह होती है जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, सहयोग हो, ईमानदारी हो और एक दूसरे की प्रगति देखकर खुशी महसूस हो। सच्चा दोस्त वही होता है साथियों जो हमारी इच्छाओं को बढ़ाए और गलतियों को प्यार से सुधारने की कोशिश करे। तो श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं इस विषय पर आधारित एक प्यारा सा नाटक।
1: रिद्धिमा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ?
2: हाँ, क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या बात है?
1: अरे, कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावे का दोस्त है।
2: अचानक से तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
1: अरे क्या बताऊं रिद्धिमा, कल मेरी कक्षा की कुछ लड़कियां मेरे सामने तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वे मेरी अनुपस्थिति में मेरा मजाक उड़ा रही थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा।
2: अच्छा, बुरा लगना तो स्वाभाविक है कृतिका, लेकिन शायद इसी घटना ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात सिखा दी।
1: कौन सी बात?
2: सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो केवल हमारे सामने मीठी बातें करे, बल्कि सच्चा दोस्त तो वह होता है जो तुम्हारा सम्मान तुम्हारी मौजूदगी में भी करे और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी।
1: यह बात तो सही है, लेकिन क्या सच्चे दोस्ती की और कोई पहचान होती है क्या?
2: बहुत सारी होती है। सबसे पहली पहचान तो है विश्वास। अगर तुम किसी दोस्त को अपनी बात बताती हो और वह उसे दूसरों के सामने फैलाता नहीं है या किसी से शेयर नहीं करता है, तो वह तुम्हारे विश्वास की कद्र करता है।
1: हाँ, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो दोस्ती भी तो कमजोर हो जाती है ना रिद्धिमा?
2: बिल्कुल। और दूसरी पहचान है प्रोत्साहन की, यानी कि सच्चा दोस्त तुम्हारी सफलता से जलता नहीं है बल्कि खुश होता है।
1: मुझे याद है जब मुझे चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था तो तुम सबसे ज्यादा खुश हुई थी।
2: हाँ, क्योंकि दोस्त की सफलता अपनी खुशी जैसी लगनी चाहिए। अगर दोस्त की उपलब्धि देखकर मन में ईर्ष्या आने लगे तो वह स्वस्थ दोस्ती नहीं कहलाती, पता है तुम्हें?
1: पता है, लेकिन तीसरी पहचान क्या है रिद्धिमा?
2: तीसरी पहचान है सही सलाह देना। मान लो कि कोई दोस्त तुम्हें होमवर्क छोड़कर घूमने के लिए कहे या किसी का मजाक उड़ाने के लिए उकसाए, तो क्या वह अच्छा दोस्त कहलाएगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: हाँ, सच्चा दोस्त गलत काम में साथ नहीं देता कृतिका, वह जरूरत पड़ने पर नहीं कहने के साहस भी रखता है।
1: मतलब जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोके वही सच्चा मित्र है।
2: बिल्कुल। और एक और बात, सच्ची दोस्ती में तुलना भी नहीं होती है। हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है। अगर दोस्त हमेशा तुलना करे और तुम्हें छोटा महसूस कराए तो वह दोस्ती स्वस्थ नहीं है।
1: अब मुझे समझ आ रहा है कि दोस्ती केवल साथ बैठने या बातें करने का नाम नहीं है।
2: हाँ, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करना।
1: जानती हो रिद्धिमा, कभी कभी कुछ बच्चे केवल इसलिए गलत काम कर लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ऐसा कर रहे होते हैं।
2: हाँ, यही वजह है कि सही दोस्त चुनना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं ना, उनका असर हमारे विचारों और आदतों पर पड़ता है।
1: तो स्वस्थ दोस्ती हमें आगे बढ़ाती है और गलत दोस्ती हमें पीछे ले जा सकती है रिद्धिमा, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना?
2: बिल्कुल, तुम सही समझ गई। अच्छे दोस्त हमें आत्मविश्वास देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी खुशियों में दिल से शामिल होते हैं।
1: रिद्धिमा, आज मुझे अपनी उलझन का जवाब मिल गया अब मैं दोस्ती केवल हंसी मजाक देखकर नहीं करूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि सामने वाला मेरे प्रति कितना ईमानदार, सहयोगी और सम्मानजनक है।
2: हाँ कृतिका, यही समझदारी होगी, क्योंकि सच्चे दोस्त जीवन में कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं ना तो जीवन को बहुत सुंदर बना देते हैं।
1: और मुझे खुशी है कि मुझे एक सच्चे

0: दोस्त मिल चुकी है
1: और मुझे भी।
2: तो श्रोता साथियों, आज के नाटक में हमें यह समझने का अवसर मिला कि स्वस्थ दोस्ती केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं है। सच्ची दोस्ती विश्वास, सम्मान, सहयोग और सकारात्मक सोच की नींव पर खड़ी होती है। बच्चों को यह सीखना जरूरी है श्रोता साथियों कि वे ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो उनकी इच्छाओं को बढ़ावा दे, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो दोस्त हमारी सफलताओं में खुश हो, हमारी कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे और गलत कामों से दूर रहने की सलाह दे, वही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। जी हाँ साथियों, कहना चाहूंगी कि माता पिता और शिक्षक भी बच्चों को स्वस्थ दोस्ती का महत्व समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों से खुलकर बात करें, उनके मित्रों के बारे में जानें और उन्हें यह समझाएं कि अच्छे मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर बात में हाँ कहे, सच्चा दोस्त वह है जो सही बात पर साथ दे, जो सफलता में खुश हो, कठिनाइयों में सहारा बने और जीवन के राह को बेहतर बनाने में मदद करे। इसी प्यारे से संदेश के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

0: हमरो हमरो हमरो गरीबों ने पूछे ही जमीन माते नाम हिरते आवे कागज केने करने बनावो पड़े सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए
1: तो हमरो बोनो अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से ग्राम सभा तक की बात शुरू थाय है पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है एकलस ने हमरा ने हाथे मली में जावो है फार्म भरो जानकारी लो जमी माते नाम लकड़वो काटो नती जैवरे अधिकार हमरा अपनावे जानकारी सबनु हाथ में अधिकार आस है समाधान में राह
0: होवे भाइयों ने बहनों हक जानो हक मांगो जमीन का कागज माते अपनो नाम लकाड़ो
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि अगर कम समय में बेहतर काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीतियों को बनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम कहते हैं कशिश की समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या श्रोता साथियों, समस्या वास्तव में समय की कमी है? समस्या होती है समय का सही इस्तेमाल न कर पाने पर। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कुछ व्यवहारिक रणनीतियों के बारे में जिन्हें हम अपनाकर अपने काम को ज्यादा व्यवस्थित, प्रभावी और बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों से ढेर सारी बातें हम करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने काम को कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था जागृति जी कि अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि उनके पास समय ही नहीं किसी काम को करने का, और दिन कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों, हम कुछ ऐसी रणनीति आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने काम को पूरा कर सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश,
0: जैसे कि अगर पहली रणनीति की बात करें तो काम की प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे पास दिन भर में करने के लिए कई काम होते हैं, लेकिन हर काम समान रूप से जरूरी नहीं होता। इसलिए श्रोता साथियों, दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए कि आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करना सबसे जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जरूरी कामों की एक छोटी सी आप सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में दीजिए श्रोता साथियों। जैसे कि उदाहरण के लिए, अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी करनी है और प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, मोबाइल पर दोस्तों के संदेशों का जवाब भी देना है, तो पहले पढ़ाई, प्रोजेक्ट, फिर जरूरी काम पूरे करने होंगे। और यही श्रोता साथियों बेहतर रहेगा। याद रखिए, व्यस्त रहना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे दिन व्यस्त रहने के बजाय सही काम को सही समय पर करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साथियों।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकता है। काम करते करते मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया खोलना और फिर दोबारा काम पर लौटना, इससे समय भी जाता है और ध्यान भी हमारा टूट जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, कोशिश करें कि जब कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए केवल उसी पर ध्यान दें। अपने आप से कहें कि अभी सिर्फ यही काम करना है। उदाहरण के लिए, यदि आपको किसी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखनी है तो उस दौरान बार बार मोबाइल देखने के बजाय पहले स्क्रिप्ट पूरी करने पर ध्यान दें।
0: जी,
1: एकाग्रता बढ़ने से काम की गति के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों, कई बार बड़ा काम देखकर हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसे शुरू करने का हमारा मन ही नहीं करता।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में जागृति जी, बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है, तो एक साथ पूरा प्रोजेक्ट करने के बजाय आप उसे अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। पहले जानकारी जुटाना, फिर रूपरेखा बनाना और उसके बाद लिखना और अंत में जांचना। दोस्तों, छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे होते हैं और हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने का उत्साह देती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए बड़ा काम देखकर घबराइए मत, उसे छोटे छोटे कदमों में बदल दीजिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा समय चोर कई बार हमारा अपना मोबाइल बन जाता है। हम सोचते हैं कि केवल 2 मिनट सोशल मीडिया देखेंगे, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता और वो काफी समय हम सोशल मीडिया पर बिता देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों, जरूरी काम करते समय अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं और सोशल मीडिया के लिए अलग समय निर्धारित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसका मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जरूरत है संतुलन बनाने की। इसलिए याद रखिए, जिस चीज को हम नियंत्रित नहीं करेंगे वो धीरे धीरे हमारे समय को नियंत्रित करने लगेगी।
0: बिल्कुल जागृति जी। ऐसे में साथियों, दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा आप तैयार करें। जैसे कि दिन खत्म होने पर केवल ये मत सोचिए कि आज कितना काम नहीं हो पाया।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि ये भी देखिए कि आज आपने हासिल क्या किया है। खुद से 3 सवाल आप पूछे, जैसे कि आज मैंने कौन सा महत्वपूर्ण काम पूरा किया, मेरा समय कहाँ सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ और कल मैं अपने काम को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये छोटी सी समीक्षा हमारी अपनी गलतियों को समझने और अगले दिन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी साथियों, बेहतर काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि बेहतर तरीके अपनाने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश। तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से हम अगर कम समय है तो बेहतर काम किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर काम करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना होगा। तो ये रणनीतियों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हम बात कर रहे थे कि अगर कम समय है तो हमें बेहतर काम किस तरह से करना है। गीत से पहले हमने काम की प्राथमिकता हमें तय करनी, इसको लेकर बातचीत की थी। साथ ही हमने जाना था कि एक समय में हमें एक ही काम करना है, काम को छोटे हिस्सों में बांट देना है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से हमें दूरी बनाए रखनी है, साथ में दिन के अंत में काम करने की समीक्षा करनी है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें तो हमने गीत से पहले कर ली थी। श्रोता साथियों, अब आपको कहना चाहेंगे कि कम समय में बेहतर काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार काम करते रहें और आराम के लिए समय ही ना निकालें। आराम, नींद, भोजन और मानसिक ताजगी भी हमारी कार्य क्षमता का हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करें कि काम के साथ साथ सीखने, परिवार, दोस्त, रुचियां और खुद के लिए भी समय रहे, क्योंकि सफलता केवल ज्यादा काम करने से नहीं मिलती बल्कि सही दिशा में सही तरीके से काम करने से मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से दोस्तों ऐसी कुछ 5 रणनीतियां हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि पहली होती है प्राथमिकता तय करने की, दूसरा एक समय में एक काम करने की, तीसरी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने की, और चौथी ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करने की, और पांचवी श्रोता साथियों दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करने की।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में युवा साथियों याद रखिए कि समय कम या ज्यादा नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज से आप अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, छोटे बदलाव अपनाइए, कुछ ही समय में आपको अपने काम में श्रोता साथियों फर्क दिखाई देने लगेगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए श्रोता साथियों कि दो युवाओं को एक ही काम पूरा करना है। कशिश, पहला युवा बिना योजना के काम शुरू करता है, बीच बीच में मोबाइल दिखता है, दूसरे काम को शुरू करता है, फिर पहले काम पर लौटता है, फिर पहले काम पर लौटता है और कहीं पर अपना काम दोहराता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह जो दूसरा युवा है वो पहले कुछ मिनट लगाकर योजना बनाता है, जरूरी काम को प्राथमिकता देता है, मोबाइल को एक तरफ रखता है, काम को छोटे हिस्सों में बांटता है और अंत में अपने काम की समीक्षा करता है। संभव है कि दोनों ने समान मेहनत की है लेकिन दूसरे युवा का समय ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल हुआ।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमें यही शिक्षा मिलती है श्रोता साथियों कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही दिशा में व्यवस्थित मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों याद रखिए कि समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन समय के इस्तेमाल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति के पास हैं। फर्क इस बात से पैदा होता है जागृति जी कि उन घंटों में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और मेहनत को किस दिशा में लगाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए दोस्तों आज से एक छोटा सा संकल्प आप लीजिए, काम ज्यादा करने का नहीं, काम बेहतर तरीके से करने का है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, प्राथमिकता तय होती है और काम करने का तरीका व्यवस्थित हो जाता है तो कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आज की इस बातों का सार यही है कि समय कम नहीं है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। जब हम अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं, बड़े काम को छोटे कदमों में बांटते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करते हैं और हर दिन अपने काम की समीक्षा करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उपलब्ध समय का हमने कितना सार्थक उपयोग किया है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए आज से एक छोटा सा आप संकल्प लीजिए, काम को टालेंगे नहीं, सही काम को प्राथमिकता देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, बड़े लक्ष्य से डरेंगे नहीं, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर दिन हमारे हाथ में एक नया अवसर लेकर आता है, बीता हुआ समय छोटा साथियों हम सभी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है, ये हमारे हाथ में ही होता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अपने समय की कीमत समझिए, अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए और हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन समय को सही दिशा देना हमारे हाथ में है। छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बेहतर समय प्रबंधन ही बेहतर जीवन की शुरुआत है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जा सकता है कि हमारा आज का एक व्यवस्थित घंटा साथियों कल की कई उलझनों को आसान बना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए समय को सिर्फ गुजरने मत दीजिए, उसे अपने सपनों की दिशा में लगाइए। याद रखिए दोस्तों, समय कम नहीं होता, हमारी दिशा कहीं ना कहीं कई बार बिखर जाती है।
0: जी हाँ,
1: जब लक्ष्य स्पष्ट हो, प्राथमिकताएं तय हो और मेहनत सही जगह लगाई जाए जागृति जी, तो कुछ घंटे भी बहुत कुछ बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
1: जी हाँ,
0: जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज की कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ने आपड़े मय देखाय तो आपड़ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निशुल्क

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आप एक कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हूं, या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हूं, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम सच्चा स्वराज में आप सभी श्रोता साथियों का स्वागत है।
1: जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी जागृति भट्ट
0: और मैं हूँ आप सभी के साथ आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर।
1: स्वीकार करें हम दोनों का प्यार भरा नमस्कार।
0: श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाकर रेडियो 90.8 FM पर।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम सच्चा स्वराज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा विषय रहेगा मिलकर काम करने की संस्कृति कैसे विकसित हम कर सकते हैं। अंजलि, अकेला व्यक्ति रास्ता तय कर सकता है लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए साथ चलने वाले हाथों की जरूरत होती है। जब सोच अलग अलग हो लेकिन लक्ष्य एक हो तो असंभव लगने वाला काम भी आसान हो जाता है। यही मिलकर काम करने की संस्कृति की असली ताकत है।
0: बिल्कुल, तो जागृति जी आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
1: बिल्कुल, तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत भी करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं मिलकर काम करने की संस्कृति को हम कैसे विकसित करें।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, किसी भी समाज, संस्था, गांव या देश की वास्तविक ताकत उसके संसाधनों से ज्यादा उसके लोगों की एकजुटता में होती है। जब अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और अपनी जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाते हैं, तब बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चे स्वराज का अर्थ केवल शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने जीवन, समाज और समुदाय से जुड़े निर्णयों में जागरूक होकर अपनी भूमिका निभाता है। जहां लोग केवल सरकार या किसी संस्था से समाधान की उम्मीद नहीं करते, बल्कि स्वयं आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान खोजते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस दृष्टि से मिलकर काम करने की संस्कृति सच्चे स्वराज की आधारशिला है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम कह सकते हैं कि हमारे गांव और समुदायों में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। पानी बचाना हो, गांव को स्वच्छ रखना हो, बच्चों की शिक्षा को मजबूत करना हो, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी हो या पलायन को रोकना हो।
1: बिल्कुल,
0: हर जगह सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज जरूरत केवल ये पूछने की नहीं है कि कौन करेगा, बल्कि ये पूछने की है कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं से हम की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। मिलकर काम करने की संस्कृति की पहली सीढ़ी सोच में बदलाव है। जब व्यक्ति हर समस्या को केवल अपने दृष्टिकोण से देखने लगता है अंजलि, तो सहयोग की भावना कमजोर होती है।
1: जी जी।
0: और इसके विपरीत जब हम ये समझते हैं कि हमारी खुशहाली दूसरों की खुशहाली से जुड़ी है, तब सामूहिकता की भावना जन्म लेती है।
1: बिल्कुल,
0: मैंने किया की जगह हमने किया का भाव किसी भी समूह को मजबूत बनाता है। एक किसान अकेले अपने खेत की चिंता कर सकता है, लेकिन पूरे गांव के जल स्रोतों को बचाने के लिए श्रोताओं, पूरे समुदाय का साथ बहुत जरूरी है। एक शिक्षक अपने विद्यालय को बेहतर बना सकता है, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लिए अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी का सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कह सकते हैं कि यही हम की भावना सच्चे स्वराज को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, साझा लक्ष्य तय करना है, क्योंकि किसी भी सामूहिक प्रयास की सफलता के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट साझा लक्ष्य होना चाहिए। यदि 10 लोग 10 अलग दिशाओं में चलेंगे जागृति जी, तो उनकी मेहनत बिखर जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि सभी का उद्देश्य एक होगा तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकते हैं। गांव में यदि लक्ष्य है कि कोई बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे, तो शिक्षक, अभिभावक, पंचायत और समुदाय को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि लक्ष्य है कि गांव में पानी की एक एक बूंद बचाई जाए, तो जल संरक्षण को लेकर किसी एक परिवार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। साझा लक्ष्य लोगों को जोड़ता है और उन्हें ये एहसास कराता है कि उनकी छोटी सी भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, एक दूसरे की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलकर काम करने का अर्थ केवल अपनी बात रखना नहीं होता, बल्कि दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी होता है। हर व्यक्ति के पास अपने अनुभव है, ज्ञान है और समस्याएं भी होती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान उस व्यक्ति के पास होता है जो समस्या को प्रत्यक्ष रूप से झेल रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समुदाय में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी बात को सम्मान के साथ रख सके। अब महिला, किसान, युवा, बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग सभी की आवाज को महत्व मिलना चाहिए। जब निर्णय लोगों पर थोपे नहीं जाते बल्कि उनके साथ मिलकर लिए जाते हैं, तो उनमें निर्णय के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सामूहिक काम का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम करे, बल्कि इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभाए। किसी को योजना बनाने में रुचि है, तो किसी को लोगों से संवाद करने में, तो कोई तकनीक का काम अच्छे तरीके से कर लेता है, तो कोई संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। यदि श्रोता साथियों इन क्षमताओं को पहचान कर जिम्मेदारियां बांट दी जाए, तो काम आसान और प्रभावी हो जाता है। जिम्मेदारी बांटने के साथ साथ जागृति जी, जवाबदेही भी जरूरी है। जिस काम की जिम्मेदारी ली है, उसे समय पर पूरा करने की आदत टीम के विश्वास को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि मिलकर काम करने की संस्कृति हम हमारे अंदर किस तरह से विकसित कर सकते हैं, तो अंजलि, बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि मिलकर अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें मैं से हम की ओर बढ़ना होगा,
1: बिल्कुल
0: साझा लक्ष्य तय करना है, एक दूसरे की बात को सुनना है और जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा करना है। इसी के साथ जागृति जी, अब बात आती है विश्वास और पारदर्शिता की। तो श्रोता साथियों, किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ लोगों को एक दूसरे पर भरोसा होता है वहाँ सहयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता बल्कि यह ईमानदार व्यवहार, पारदर्शी निर्णय और लगातार जिम्मेदारी निभाने से बनता है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी सामुदायिक कार्य में धन या संसाधनों का उपयोग हो रहा है तो उसकी जानकारी सभी संबंधित लोगों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। पारदर्शिता से गलतफहमियां कम होती है और लोगों का विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास जागृति जी सामूहिक प्रयासों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।
1: जी हाँ अंजलि, जहाँ अनेक लोग साथ काम करेंगे वहाँ विचारों में अंतर होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, समस्या मतभेद नहीं बल्कि मतभेद को विवाद में बदल देती है। अलग विचारों को दबाने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी होगी। यदि किसी निर्णय पर आपकी असहमति है तो व्यक्ति को गलत साबित करने के बजाय विचार को समझने का प्रयास होना चाहिए। लोकतांत्रिक और स्वराज आधारित व्यवस्था में हर आवाज का सम्मान महत्वपूर्ण है। संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की संस्कृति ही स्वस्थ सामूहिकता को जन्म देती है। हम देखते हैं अंजलि कि मिलकर काम करने की संस्कृति बड़े अभियानों से ही विकसित नहीं होती। इसकी शुरुआत रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से होती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव में स्वच्छता अभियान हो, विद्यालय में बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाने का प्रयास हो, पौधारोपण हो, पानी की टंकी की सफाई हो या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता हो, इन छोटे कार्यों में मिलकर भाग लेने से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। जब लोग बार बार साथ काम करते हैं तो उनके बीच विश्वास और अपनापन बढ़ता है और धीरे धीरे यही छोटी पहल बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बात आती है कि श्रेय से अधिक समाधान पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों कई बार सामूहिक काम में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि लोग यह सोचने लगते हैं कि सफलता का श्रेय किसे मिलेगा। ऐसी सोच टीम को कमजोर कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची टीम भावना में प्रश्न यह नहीं होता कि नाम किसका होगा बल्कि यह होता है कि काम कैसे सफल होगा।
1: जी हाँ।
0: यदि गांव में जल संरक्षण का कार्य सफल होता है तो उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को मिलना चाहिए, क्योंकि सामूहिक सफलता का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसका लाभ सभी को मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि हर सामूहिक प्रयास हमेशा सफल हो ये जरूरी नहीं।
1: जी हाँ।
0: कभी योजना में कमी रह जाती है, कभी संसाधनों की कमी हो सकती है, तो कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में श्रोता साथियों, एक दूसरे को दोष देने से समस्या हल नहीं होती। इसके बजाय ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: असफलता को दोषारोपण का अवसर नहीं सीखने का अवसर बनाना चाहिए, और यही सोच जागृति जी टीम को लगातार आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, मिलकर काम करने की संस्कृति में नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता। सच्चा नेतृत्व तो वो है जो लोगों को साथ लेकर चलता है, उनकी बात को सुनता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि जो व्यक्ति दूसरों से समय देने की अपेक्षा करता है उसे स्वयं भी समय देना होगा। जो ईमानदारी की बात करता है उसे अपने व्यवहार में भी ईमानदारी दिखानी होगी। नेतृत्व तब प्रभावी होता है जब लोग नेता के आदेश से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से प्रेरित होकर साथ आते हैं। इसी के साथ महिला और युवाओं की भागीदारी को लेकर हम बात करें तो सामूहिक विकास तब पूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्गों की भागीदारी न हो। विशेष रूप से महिला और युवाओं की भूमिका भी बहुत जरूरी है। महिलाएं हमारी परिवार, कृषि, जल, पोषण, समुदाय से जुड़े अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए श्रोताओं, उनके अनुभव और निर्णयों को सामूहिक योजनाओं में उचित स्थान मिलना चाहिए।
0: जी जी।
1: इसी प्रकार अगर युवाओं की बात करें तो युवा नई सोच, तकनीक और ऊर्जा लेकर आते हैं अंजलि। अगर युवाओं को केवल दर्शक न बनाकर परिवर्तन का भागीदारी बनाया जाए तो समुदाय में नई ऊर्जा पैदा हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि मिलकर काम करने की संस्कृति बचपन से विकसित होती है। विद्यालय बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान देने का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार सिखाने का भी स्थान है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को सामूहिक गतिविधियों, खेलों, स्वच्छता अभियानों, पौधारोपण और सामुदायिक कार्यों में शामिल किया जा सकता है। इससे हम देखते हैं कि उनमें नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। आज का सहयोगी बच्चा ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चे स्वराज का एक महत्वपूर्ण आधार है स्थानीय संसाधनों और स्थानीय ज्ञान पर भरोसा।
1: बिल्कुल,
0: हर गांव और समुदाय के पास अपनी समस्याओं से निपटने का पारंपरिक ज्ञान और अनुभव होता है। बुजुर्गों के अनुभव, किसानों का स्थानीय ज्ञान, महिलाओं का घरेलू और पोषण संबंधित अनुभव, युवाओं की तकनीकी समझ और इन सब को जोड़कर बेहतर समाधान तैयार किया जा सकते हैं।
1: जी हाँ,
0: जब समुदाय अपनी ताकत पहचानता है तो वह हर छोटी समस्या के लिए बाहर से सहायता की प्रतीक्षा नहीं करता।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्राम सभा, पंचायत, विद्यालय, स्वयं सहायता समूह, युवा समूह और अन्य सामुदायिक संस्थाएं मिलकर सहयोग की मजबूत व्यवस्था बना सकती है। इन संस्थाओं के बीच संवाद और समन्वय होना होगा। अगर सभी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम करें लेकिन एक दूसरे से जुड़ी ना हो तो प्रयास बिखर जाएंगे। श्रोताओं, साझा बैठक के स्पष्ट योजना और नियमित समीक्षा सामूहिक प्रयासों को मजबूत कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आपको कहना चाहेंगे कि आज तकनीक लोगों को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन गई है। मोबाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक संचार माध्यमों का उपयोग सूचना साझा करने, बैठक की जानकारी देने, अच्छे कार्यों को सामने लाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन तकनीक का उद्देश्य केवल संदेश भेजना नहीं होता अंजलि, उसका उपयोग वास्तविक भागीदारी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। डिजिटल संवाद के साथ जमीन पर वास्तविक सहयोग भी जरूरी है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज तभी मजबूत होगा जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। केवल यह कहना कि सरकार हमारी समस्या हल करे स्वराज की पूरी भावना नहीं है। यदि सड़क पर कचरा है तो उसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है।
1: जी
0: यदि
1: हाँ।
0: पानी कम है तो पानी बचाने की जिम्मेदारी भी श्रोता साथियों हमारी है। यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो उसके भविष्य की चिंता केवल किसी एक संस्था की नहीं पूरे समाज की होनी चाहिए। स्वराज का अर्थ अपने जीवन और अपने समाज से जुड़े मामलों में जागरूक होकर जिम्मेदारी निभाना है। इसके लिए साथ को आदत बनाना, यानी कि मिलकर काम करने की संस्कृति किसी एक दिन की बैठक से विकसित नहीं होती या लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: आज हम किसी की मदद करें, कल किसी की बात सुने, किसी दिन सामुदायिक समस्या पर चर्चा करें और किसी अवसर पर सामूहिक श्रमदान करें। इन प्रयासों से धीरे धीरे सहयोग हमारी आदत बन जाता है और जब सहयोग आदत बन जाता है तो समुदाय की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, मिलकर काम करने की संस्कृति को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, तो छोटी मोटी बातें रह गई वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में आपसे यह कहना चाहेंगे कि मिलकर काम करने की संस्कृति केवल काम पूरा करने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज को मजबूत बनाने की सोच है। इसमें विश्वास है, सम्मान है, जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर हम की भावना है।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज किसी एक व्यक्ति के हाथों से नहीं बल्कि करोड़ों जिम्मेदार हाथों से बनता है अंजलि। जब गांव का किसान, शिक्षक, महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्ग अपनी अपनी भूमिका को समझकर एक साझा उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तब विकास केवल योजना नहीं रहता, वो जन भागीदारी का आंदोलन बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दोस्तों हमें तय करना होगा कि हम समस्याओं के लिए केवल किसी और की ओर देखने वाले नागरिक बनेंगे या समाधान का हिस्सा बनेंगे। हमें ये सोच विकसित करनी होगी कि मेरे गांव की समस्या मेरी भी समस्या है, मेरे समुदाय की प्रगति मेरी भी प्रगति है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज से हम, मैं से हम, मेरा से हमारा और कौन करेगा से हम मिलकर करेंगे कि और कदम जरूर बढ़ाए, क्योंकि जब हाथ मिलते हैं तो केवल काम पूरा नहीं होता, विश्वास बनता है। जब विचार मिलते हैं तो केवल योजना नहीं बनती, दिशा बनती है। और जब पूरा समुदाय मिलकर आगे बढ़ता है अंजलि, तब केवल विकास नहीं होता, सच्चा स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, तो कह सकते हैं श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज वही है जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आवाज सुनी जाए और हर कदम सामूहिक भलाई के लिए आगे बढ़े। इसलिए मिलकर काम करने की संस्कृति को अपनी आदत, अपनी पहचान और अपने सच्चे स्वराज की ताकत बनाए।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें बहुत सारी हो चुकी है, समय का मान रखना होगा और विदा लेना होगा, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय से जो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है, जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जाँच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी थकी करो। थोड़ू सू व्यायाम ने तात काढ़ी नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड थकी दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरो। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आ राज ने अपना वंगा ने जीवन ने स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वाघ रेडियो वाघधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपनी साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपनी साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग रोज के भोजन में दाल को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों हर थाली में रोटी सब्जी और दाल का विशेष स्थान होता है? इसका कारण यह है कि दालें केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने वाले अनेक पोषक तत्वों का खजाना है। दालें भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा है मनीषा, क्योंकि अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, राजमा, लोबिया जैसे जो दालें हैं वो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं।
0: जी हाँ,
1: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दालें प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत मानी जाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारतीय भोजन में दाल का विशेष स्थान है। घरों में रोज किसी न किसी रूप में दाल बनाई जाती है साथियों। कभी अरहर की दाल हो, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल या फिर कोई अन्य दलहन, हर दाल अपने अंदर कहीं महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को समेटे हुए होती है। साथियों, कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर और पर्याप्त पानी जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। दालें इसमें से विशेष रूप से प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और कई खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत हो सकती हैं।
1: जी हाँ मनीषा, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख रूप से, जैसा कि आपने भी बताया, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और फाइबर चाहिए होता है। यदि इनमें से किसी एक की भी कमी रह जाती है तो शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। बच्चों के शारीरिक विकास, युवाओं की ताकत और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। यही कारण है कि जिन्हें नियमित रूप से दूध, अंडा या मांस नहीं मिलता, उनके लिए दाल एक बेहतरीन विकल्प है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है फाइबर, जो कि दालों में मौजूद रहता है और उसमें फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आवश्यक खाने की आदत भी कम हो जाती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि दालों में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। विशेष रूप से मनीषा, महिलाओं और किशोरियों और गर्भवती माताओं के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यहीं अगर बात करें खनिज पदार्थों की तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि दालों में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और अन्य खनिज पदार्थ शामिल होते हैं। खनिज पदार्थ शरीर की विभिन्न सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करना भी जरूरी है। यहीं अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। श्रोता साथियों, जब हम दाल को चावल या रोटी के साथ खाते हैं तो हमें एक ही भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए भारतीय भोजन में दाल चावल और दाल रोटी जैसी पारंपरिक जोड़ियां लंबे समय तक लोकप्रिय रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि इसके अलावा दालों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डी और दांतों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं।
0: जी हाँ,
1: बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये तत्व विशेष रूप से आवश्यक है। दालों में विटामिन बी समूह भी पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुख करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि दालों में विटामिन बी समूह भी पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। आजकल मनीषा, कई लोग बाजार में मिलने वाले जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ पोषण भी जरूरी है। दालें सस्ती हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम दालों को अनाजों के साथ मिलाकर खाएं, जैसे कि दाल रोटी, दाल चावल, खिचड़ी, तो शरीर को और बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त होता है। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय भोजन को संतुलित आहार माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: अंकुरित मूंग और चना भी पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है। अंकुरित दालों में विटामिन और खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें सलाद के रूप में या हल्का उबाल कर भी खाया जा सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही दाल खाने की आदत डालनी चाहिए, इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। वहीं बुजुर्गों के लिए दाल आसानी से पचने वाला पौष्टिक भोजन है, क्योंकि मनीषा, स्वस्थ जीवन के लिए केवल पेट भर भोजन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौष्टिक भोजन आवश्यक है। दालें हमें यह सीख देती है कि साधारण दिखने वाली चीजें भी असाधारण लाभ दे सकती हैं। यदि हर परिवार अपनी दैनिक थाली में किसी न किसी रूप में दाल को शामिल करे, तो कुपोषण, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव संभव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दाल ही पर्याप्त नहीं होती। हमारा भोजन है वो भी श्रोता साथियों संतुलित होना चाहिए।
0: जी जी।
1: एक संतुलित भोजन की थाली में अनाज, दाल, अन्य प्रोटीन स्रोत, हरी और रंगीन सब्जियां, मौसमी फल, दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थ वो शामिल होते हैं। इसमें श्रोता साथियों अलग अलग पोषक तत्व होते हैं, वो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। हमारी थाली श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जितनी विविध होगी, उसमें अलग अलग पोषक तत्वों को शामिल करना उतना ही आसान होगा।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि अच्छी सेहत किसी महंगी दवा या विशेष भोजन से नहीं, बल्कि सही खानपान की आदतों से बनती है। दालें हमारी परंपरा, हमारी खेती और हमारे स्वास्थ्य तीनों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भोजन है।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम अपनी थाली में दाल को सम्मान देते हैं, तब हम केवल एक व्यंजन नहीं खा रहे होते श्रोता साथियों, बल्कि अपने शरीर को शक्ति, ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहे होते हैं। इसलिए हम स्वयं भी पौष्टिक भोजन अपनाएं और अपने परिवार और समुदाय को भी दालें और संतुलित आहार के महत्व के प्रति जागरूक बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन और समृद्ध समाज की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल अच्छा भोजन पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमें नियमित गतिविधियां, पर्याप्त नींद, स्वच्छ पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता और तनाव को संभालने जैसी अच्छी आदतें हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि दालों को संतुलित भोजन का हिस्सा बनाना हमारे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में एक छोटा सा लेकिन उपयोगी कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन केवल स्वादिष्ट होने के साथ

0: साथ वो पौष्टिक भी हो और हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी दे। साथ ही श्रोता साथियों, इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगी कि दाल हमारे भोजन का साधारण दिखाई देने वाला लेकिन पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
1: बिल्कुल,
0: दालें हमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और अन्य कई पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक संतुलित आहार में दालों की उचित मात्रा को शामिल करना चाहिए।
1: बिल्कुल मनीषा, हम अपने घरों में ऐसी भोजन संस्कृति विकसित कर सकते हैं जिसमें पौष्टिकता को प्राथमिकता मिले। बच्चों को दालें और पारंपरिक खाद्य पदार्थों का महत्व बताएं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक अनाज और दालों का उपयोग बढ़ाएं और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब हर परिवार पोषण के प्रति जागरूक होगा तब हमारा समुदाय भी अधिक स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा।
0: जी हाँ,
1: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।
0: जी हाँ,
1: याद रखिए श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। आपकी थाली को पोषण से भरिए, अपने शरीर को ऊर्जा से भरिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य और खुशहाली से भरिए। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम के अंत में एक और प्यारे से गीत के साथ क्यों ना मनीषा हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
0: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारशर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
2: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन।
1: होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके।
0: जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनु, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाए तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दार पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची सकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: जागृति बुन, आपने कार्य सोचू है? अगर आप बूंदे रुके जाएंगा तो हूँ था है?
3: नाना अंजलि बुन, हूँ था का?
1: अरे जागृति बुन, आपड़ी जे नदिया है ये रुके जाएंगा, खेतर बंजर थे जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुके जागा।
3: ओ अंजलि बुन, एटले इस मन का कहे कि पानी तो काल है, पानी थकीस आपड़ो जीवन है।
1: होवे जागृति बुन, हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है।
3: होवे अंजलि बुन, आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो, बारिश ने पानी नु संग्रह करो, आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी जागा।
1: होवे होवे जागृति बुन, आपड़े भाई बहनो ने कह कि पानी बचाओ, पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो। जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है, हर बूंद नु मोल आपड़े जानो।
0: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। भाई ने बोनो, आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपड़े रह हां या आपड़े ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है।
1: होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा।
0: प्रकृति आपड़ी जरूरत नहीं बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
1: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
0: होवे आज नाना ना कदम है ई अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
1: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: कार्यक्रम समस्या समाधान हमरवावारा अमर हित्ता भाई बोनो ने आपनी बोन मनीषा
1: ने आपनी बोन अंजलि नु
0: राम राम। होवे भाई बोनो आप सब हामळी रिया हो आपणो सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM ने आप सभी नो स्वागत कर रहा हमारे आज ने कार्यक्रम समस्या समाधान में।
1: होवे भाई बोनो लेने हाजिर थे के हो कार्यक्रम समस्या समाधान ने लेने एक ना विषय ने हाथे मनीषा बोन आज अपने कार्यक्रम में बातचीत नो विषय है के सामुदायिक बैठक में कम थाती भागीदारी ने एनु समाधान हो थी सके। आपणे देखो हो के गांव में जई वगत ग्राम सभा रहे है ते इन में विकास कार्य नीचे चर्चा है इथाय है। जल संरक्षण शिक्षा स्वास्थ्य ये सामाजिक जे मुद्दे हैं एना ने माते भी बैठक हाथ दे हैं। आपणे अक्सर देखो हो के इनमें घणो कम मनक शामिल थाए हैं। घणो जे मनक हैं ई निर्णय नथी लेता ने निर्णय भी ले हैं तो घणी वगत एना नी स्थिति में ई सहमत भी नथी थाता। तई वगत आनु हित प्रभाव आपणे गाम माते पड़े है। आखिर आवुं केम थई रह्युं है मनक सामुदायिक बैठक तकी केम दूर थाता जई रहे हैं अंत की गांवना विकास माते हूँ प्रभाव पड़े है आ हित्ती वाते आज आपणे कार्यक्रम ने माध्यम तकी करवा वा रहो।
0: होवे अंजलि बोन तो अणा विषय माते आपणे भाई बोन खाते घणा हक्कानी वाते रहेगा अबर हामळा गीत ने मोरे कर आपणी वाते।
1: होवे तो भाई बोनो आप हांभरता रहेजो आपणो रेडियो आपणी वाते वागड़ रेडियो 90.8 FM माते।

0: कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ सुनने वाले सभी दोस्तों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर का प्यार भरा नमस्कार।
0: जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, आज हमारी कार्यक्रम में आपसे बातचीत का विषय है विश्व वरिष्ठ नागरिकता दिवस को लेकर।
0: बिल्कुल,
1: जानेंगे आज कार्यक्रम के माध्यम से कि किस तरीके से अनुभव की वह धरोहर है जिसकी जरूरत हर पीढ़ी को होती है।
0: बिल्कुल,
1: कशिश कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि जरा सोचिए कि जिस व्यक्ति ने हमें चलना सिखाया, क्या उम्र बढ़ने पर हमारा हाथ उनके लिए नहीं होना चाहिए? जिसने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार की खुशियों के लिए लगा दिया, क्या बुढ़ापे में उनसे केवल आराम की ही नहीं बल्कि सम्मान और अपनापन की भी जरूरत नहीं होती?
0: बिल्कुल।
1: और सबसे जरूरी सवाल यह है कि क्या हम अपने घर के बुजुर्गों को केवल जिम्मेदारी समझते हैं या परिवार की जीवित विरासत मानते हैं?
0: बिल्कुल।
1: इन्हीं सवालों के साथ आज कार्यक्रम में हम श्रोता साथियों से इस दिवस पर ढेर सारी बातें करेंगे।
0: जी हाँ।
1: कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना कशिश हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए श्रोता साथियों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय आपको बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक दिवस को लेकर।
1: बिल्कुल।
0: तो अंजलि जी, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे जो वरिष्ठ नागरिक है वो हमारे समाज की अमूल्य धरोहर है।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने अपने जीवन का लंबा समय परिवार, समाज और राष्ट्र की सेवा में लगाया है। साथियों, अपने अनुभव, ज्ञान, संस्कार और जीवन मूल्यों के कारण वे समाज के लिए मार्गदर्शक की भूमिका निभाते हैं।
1: जी हाँ।
0: साथ ही बात करें तो आधुनिक समय में परिवारों की संरचना और जीवन शैली में तेजी से परिवर्तन हो रहा है, जिसके कारण कई बार वरिष्ठ नागरिकों को अकेलेपन, असुरक्षा जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अंजलि जी,
1: बिल्कुल।
0: इसलिए उनके सम्मान, अधिकारों और कल्याण के प्रति समाज में जागरूकता पैदा करना हमारे लिए बहुत जरूरी है और इसी उद्देश्य से वरिष्ठ नागरिक दिवस मनाया जाता है।
1: बिल्कुल कशिश, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस हर वर्ष 21 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन हमें समाज के वरिष्ठ नागरिकों के योगदान, अधिकारों, सम्मान और उनकी आवश्यकताओं के बारे में सोचने का अवसर देता है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, बुजुर्ग केवल उम्र के एक पड़ाव पर पहुंचे हुए लोग नहीं है, वे अपने साथ वर्षों का अनुभव, संघर्ष, परंपराएं, रिश्तों की समझ और जीवन से सीखी हुई अनगिनत बातें लेकर चलते हैं।
0: बिल्कुल।
1: हमारे गांव में तो बुजुर्गों का महत्व और भी गहरा है। पहले परिवार की किसी बड़ी समस्या और घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह ली जाती थी। खेती कब करनी है, मौसम के बदलाव को कैसे समझना है और कौन सी परंपरा क्यों निभाई जाती है।
0: बिल्कुल।
1: श्रोता साथियों, रिश्तों को कैसे संभालना है, इन सब का ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता था। आज समय बदल रहा है, परिवार छोटे हो रहे हैं, युवा रोजगार और पढ़ाई के लिए गांवों से शहरों की ओर जा रहे हैं।
0: बिल्कुल।
1: तकनीक ने जीवन को आसान बनाया है, लेकिन इसके साथ पीढ़ियों के बीच दूरी भी बढ़ गई है। ऐसे समय में श्रोता साथियों, वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें याद दिलाता है कि आधुनिकता अपनाना जरूरी है, लेकिन अपनी जड़ों से जुड़ना उतना ही जरूरी है।
0: जी हाँ।
1: कई बार हम उम्र के बढ़ने के साथ बुजुर्गों को कमजोर समझने लगते हैं।
0: बिल्कुल।
1: यह सच है श्रोता साथियों कि उम्र के साथ शरीर में कुछ बदलाव आते हैं, चलने फिरने में परेशानी होती है, सुनने या देखने में कठिनाई हो सकती है और रोजमर्रा के कुछ कामों में सहायता की आवश्यकता पड़ सकती है। लेकिन श्रोता साथियों, इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि उनका महत्व कम हो गया है। एक बुजुर्ग किसान से खेती के बारे में पूछिए, वह आपको केवल फसल उगाने की बात नहीं बताएगा कशिश, बल्कि मिट्टी की पहचान, मौसम का अंदाज और वर्षों के अनुभव से निकली गई छोटी बातें बता सकता है।
0: बिल्कुल।
1: एक दादी से पारंपरिक भोजन के बारे में पूछिए, वह आपको बता सकती है कि किस मौसम में कौन सा स्थानीय अनाज उपयोगी है, कौन सी पारंपरिक रेसिपी कैसे बनाई जाती है और पुराने समय में भोजन को सुरक्षित कैसे रखा जाता है।
0: जी हाँ।
1: श्रोता साथियों, एक दादा से गांव के इतिहास के बारे में पूछिए, वह आपको ऐसी बातें बता सकते हैं जो शायद किसी किताब में नहीं मिले। इसलिए बुजुर्गों को केवल कशिश देखभाल की जरूरत वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखना है, बल्कि ज्ञान और अनुभव के स्रोत के रूप में भी देखना चाहिए।
0: बिल्कुल अंजलि जी, हम देखते हैं साथियों कि ऐसे व्यक्ति जो जीवन के उत्तरार्ध में पहुंच चुके हैं और जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है, तो उन्हें वरिष्ठ नागरिक कहा जाता है।
1: बिल्कुल।
0: ये अवस्था जीवन का वह पड़ाव है अंजलि जी, जिसमें व्यक्ति को अपने अनुभवों को नई पीढ़ी के साथ साझा करने और परिवार समाज के साथ सम्मानपूर्वक जीवन बिताने का अवसर मिलना चाहिए। साथियों, वरिष्ठ नागरिक केवल उम्रदराज व्यक्ति नहीं होते, बल्कि वे अनुभव और ज्ञान के भंडार होते हैं। उन्हें जीवन में अनेक उतार चढ़ाव देखे हुए होते हैं उनके द्वारा, और उनके अनुभव युवा पीढ़ी को सही निर्णय लेने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और जीवन के मूल्यों को समझने में सहायता कर सकते हैं।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत अच्छी बातें चल रही है, आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल। तो श्रोता साथियों, आप बने रहिएगा कार्यक्रम हमारी बात आपके साथ में।

0: श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि बातें बहुत अच्छी चल रही है अंजलि जी, हम बात कर रहे हैं वरिष्ठ नागरिक दिवस को लेकर, और एक वरिष्ठ नागरिक क्या होता है ये भी हम जान पा रहे थे।
1: बिल्कुल,
0: यही हमारे साथियों को हम बताना चाहेंगे कि श्रोता साथियों, वरिष्ठ नागरिक दिवस का मुख्य उद्देश्य वृद्ध लोगों के प्रति सम्मान और संवेदनशीलता की भावना को बढ़ावा देना है। ये दिवस हमें ये याद दिलाता है कि समाज की प्रगति केवल आर्थिक विकास से नहीं होती,
1: बिल्कुल,
0: बल्कि इस बात से भी होती है कि हम अपने बुजुर्गों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अंजलि जी, वरिष्ठ नागरिकों ने अपने परिवारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। माता पिता ने अपने बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण और भविष्य के लिए अनेक त्याग किए हैं। अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने देश के अलग अलग क्षेत्रों में काम करके राष्ट्र के विकास में योगदान दिया है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए साथियों, जीवन के इस पड़ाव पर उनका सम्मान करना हमारा नैतिक और सामाजिक कर्तव्य है।
1: बिल्कुल कशिश, वरिष्ठ नागरिकों को भोजन, दवा और रहने की जगह की जरूरत तो होती है
0: जी,
1: लेकिन इसके साथ उन्हें एक और चीज की बहुत आवश्यकता होती है, वो है सम्मान। कभी कभी परिवार के लोग बुजुर्गों की छोटी छोटी बातों को महत्व नहीं देते, उनकी बात बीच में काट देते हैं, उनके जो पुराने विचार होते हैं उनका मजाक बना देते हैं, या उन्हें यह महसूस करा देते हैं कि अब वे किसी काम के नहीं। श्रोता साथियों, ऐसा व्यवहार उनके मन को चोट पहुंचा सकता है। हमें यह समझना होगा कि हर पीढ़ी का सोचने का तरीका अलग हो सकता है।
0: बिल्कुल,
1: बुजुर्गों की कुछ बातें जो होती है वो हमें पुरानी लग सकती है, और युवाओं की कुछ बातें हमें नई और अजीब लग सकती है, लेकिन अंतर जो होता है वो अपमान करना नहीं होता है। अगर दादा दादी किसी बात पर अपनी राय देते हैं तो उनकी बात सुन लेना चाहिए। जरूरी नहीं है कि हर बात मानना ही पड़े, लेकिन सम्मान पूर्वक सुनना भी सम्मान का एक रूप होता है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे कशिश श्रोता साथियों से कि घर में बुजुर्गों के लिए अपनापन हमें बढ़ाने की जरूरत है। बुजुर्गों की देखभाल के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीजों की जरूरत नहीं होती है, कई बार छोटी सी कोशिश उनके चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला सकती है।
0: बिल्कुल,
1: सुबह उनके पास बैठकर कुछ मिनट बात करना, उनसे उनके पुराने दिनों के बारे में पूछना, उनकी पसंद का भोजन बनाना, बाजार जाते समय पूछना कि उन्हें कुछ चाहिए या नहीं, उनके साथ थोड़ा टहलना, उनकी दवाइयों और जरूरी कामों की याद दिलाना, उनकी बात ध्यान से सुनना। श्रोता साथियों, ये छोटी छोटी बातें बुजुर्गों को यह एहसास दिलाती है कि वे आज भी परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही हम देखते हैं कि ये दिवस समाज को वृद्धावस्था से जुड़ी समस्याओं के प्रति जागरूक करने का भी अवसर देता है। साथियों, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां, आर्थिक निर्भरता, अकेलापन, सामाजिक उपेक्षा और डिजिटल दुनिया से दूरी जैसी समस्याएं कई वरिष्ठ नागरिकों के सामने होती हैं।
1: जी जी,
0: इन समस्याओं का समाधान परिवार, समाज और सरकार के संयुक्त प्रयासों से किया जा सकता है। हम देख सकते हैं कि भारतीय संस्कृति में बुजुर्गों को हमेशा विशेष सम्मान दिया जाता है। परिवार में दादा दादी और नाना नानी बच्चों को संस्कार, परंपराएं, लोक कथाएं और जीवन के अनुभव प्रदान करते हैं। सदैव परिवार के इतिहास और परंपराओं को अगली पीढ़ी तक पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। साथ ही बुजुर्गों की जो उपस्थिति होती है अंजलि जी, वो बच्चों के भावनात्मक विकास में भी जरूरी होती है।
1: जी हाँ कशिश, आज बच्चों का ज्यादातर समय मोबाइल, इंटरनेट और टीवी में गुजर रहा है, वहीं बुजुर्गों के पास अनुभवों की एक पूरी दुनिया है।
0: जी,
1: अगर दोनों पीढ़ियां एक दूसरे से जुड़े तो यह दूरी कम हो सकती है।
0: बिल्कुल,
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, बच्चे दादा दादी से पुराने खेल सीख सकते हैं, स्थानीय लोक कथाएं सुन सकते हैं, लोक गीत सीख सकते हैं और गाँव के इतिहास के बारे में जान सकते हैं।
0: जी,
1: कहना चाहेंगे दोस्तों कि पारिवारिक खेती और भोजन के बारे में जानकारी भी हमें हमारे बड़े बुजुर्गों से ही मिलती है।
0: बिल्कुल,
1: वहीं बुजुर्ग भी बच्चों से मोबाइल चलाना, वीडियो कॉल करना, ऑनलाइन जानकारी प्राप्त करना जैसी नई चीजें सीखते हैं। इस तरह रिश्ता जो है वो एक तरफा नहीं रहता, क्योंकि दोस्तों बुजुर्ग बच्चों को अनुभव देते हैं और बच्चे बुजुर्गों को नई दुनिया से जोड़ सकते हैं। यही पीढ़ियों का सुंदर मेल है। आज हम देखते हैं कशिश के गाँव में वरिष्ठ नागरिक सामुदायिक जीवन का महत्व हिस्सा होते हैं। वे ग्राम सभा और सामाजिक बैठकों में अपने अनुभव के आधार पर सुझाव दे सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: गांव की पुरानी जल संरचनाओं, परंपरागत खेती, स्थानीय बीज, लोक संस्कृति और सामुदायिक संसाधनों से जुड़ी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचा सकते हैं। गांव के युवा अगर श्रोता साथियों बुजुर्गों से बातचीत करें तो उन्हें अपने क्षेत्र के बारे में ऐसी जानकारी मिल सकती है जो लिखित रूप में उपलब्ध नहीं होती।
0: बिल्कुल,
1: उदाहरण के लिए किसी खेत में पहले कौन सी फसल अच्छी होती थी, किस तालाब या कुएं का पानी किस मौसम में उपयोग किया जाता था, कौन से स्थानीय बीज कम पानी में फसल देते हैं।
0: जी हाँ,
1: कौन सी पारंपरिक तकनीकें आज भी उपयोगी हो सकती हैं? श्रोता साथियों, इन सवालों के जवाब हमारे बुजुर्गों के अनुभव में ही छिपे हो सकते हैं।
0: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही अगर बात करें तो आज के समय में संयुक्त परिवारों की संख्या कम हो रही है और इसकी जगह एकल परिवार बढ़ रहे हैं। रोजगार तथा शिक्षा के कारण दोस्तों युवा अक्सर अपने माता पिता से दूर रहने लगते हैं।
1: बिल्कुल,
0: ऐसी स्थिति में अनेक बुजुर्ग अकेले रह जाते हैं। हम देखते हैं कि वरिष्ठ नागरिकों की प्रमुख समस्याओं में स्वास्थ्य संबंधित कठिनाइयां सबसे महत्वपूर्ण है।
1: जी जी,
0: उम्र बढ़ने के साथ नियमित स्वास्थ्य जांच और चिकित्सा की आवश्यकता बढ़ जाती है। कई बुजुर्ग आर्थिक रूप से भी दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं।
1: जी बिल्कुल,
0: और इसके अलावा अकेलापन, भावनात्मक अपेक्षा और गंभीर समस्या है दोस्तों। कई बार परिवार के सदस्य एक ही घर में रहते हुए भी बुजुर्गों को पर्याप्त समय नहीं दे पाते।
1: जी बिल्कुल,
0: यानी कि कुछ वरिष्ठ नागरिक तो ऐसे हैं अंजलि जी जिनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, इसलिए उनके अधिकारों और सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना बहुत जरूरी हो चुका है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बहुत ही अच्छे विषय पर बातचीत चल रही है।
0: जी हाँ,
1: आगे भी निरंतर यूं ही बनी रहेंगी, लेकिन अभी कर लेते हैं मनोरंजन एक और प्यारे से गीत के साथ में।
0: बिल्कुल।

अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही कहीं हो।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने ढेर सारी बातों को जाना था, यही श्रोता साथियों आपको कहना चाहेंगी कि हम अक्सर इतिहास किताबों में खोजते हैं, लेकिन हमारे आसपास भी इतिहास मौजूद है कशिश। हमारे गांव के बुजुर्ग, गांव के पुराने दिनों के चलते फिरते दस्तावेज हैं।
1: बिल्कुल,
0: परिवार और समुदाय एक सुंदर पहल कर सकते हैं कि बच्चे और अपने दादा दादी या गांव के वरिष्ठ लोगों का छोटा सा साक्षात्कार ले और उनसे पूछें कि हमारा गाँव पहले कैसा था।
1: बिल्कुल,
0: खेती कैसे होती थी, पहले लोग पानी कैसे बचाते थे, पुराने त्योहार कैसे मनाए जाते थे, आपके बचपन का जीवन कैसा था,
1: बिल्कुल
0: उस समय गांव में कौन कौन से पारंपरिक खेल खेले जाते थे। कशिश, इन बातचीत को लिख कर, रिकॉर्ड करके या परिवार के डिजिटल संग्रह में सुरक्षित किया जा सकता है।
1: जी हाँ।
0: इससे हमारी स्थानीय स्मृतियां आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी।
1: बिल्कुल।
0: श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य को लेकर सावधानी जरूरी हो जाती है। परिवार को बुजुर्गों की नियमित स्वास्थ्य जांच, संतुलित भोजन, पर्याप्त आराम और सुरक्षित दिनचर्या पर ध्यान देना चाहिए। उन्हें लंबे समय तक अकेला छोड़ने से बचना चाहिए, खासकर तब जब उन्हें रोजमर्रा के कामों में सहायता की जरूरत हो। घर का वातावरण भी सुरक्षित होना चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: फर्श पर पानी न जमा हो, रास्ते में अनावश्यक सामान न पड़ा हो और रात में आने जाने के लिए पर्याप्त रोशनी हो।
1: जी,
0: और
1: जी।
0: सबसे महत्वपूर्ण बात, किसी भी स्वास्थ्य समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य कर्मी या चिकित्सा की सलाह अवश्य लेनी चाहिए।
1: बिल्कुल अंजलि जी, साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए सरकार की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। ऐसे में सरकार को उनके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं, परिवहन में सुविधाएं, कानूनी सहायता जैसी कई व्यवस्थाओं को प्रभावी बनाना चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: साथ ही वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में लोगों को जागरूक भी करना चाहिए। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि युवा पीढ़ी वरिष्ठ नागरिकों के जीवन को सुखद बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उन्हें अपने दादा दादी, नाना नानी और माता पिता के साथ नियमित रूप से समय बिताना चाहिए। उनसे उनके जीवन के अनुभवों के बारे में बात करनी चाहिए और उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। अंजलि जी, युवा यदि तकनीक का ज्ञान रखते हैं तो वे बुजुर्गों को ऑनलाइन बैंकिंग, वीडियो कॉल, डिजिटल भुगतान और आवश्यक ऑनलाइन सेवाओं का सुरक्षित उपयोग करना सिखा सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इससे दोस्तों वरिष्ठ नागरिकों में आत्मविश्वास बढ़ेगा और वे बदलती दुनिया के साथ अपनी जीवन को आसानी से जोड़ पाएंगे।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। इसलिए श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि आज बहुत सी सेवाएं जो है वो डिजिटल हो गई है।
1: बिल्कुल।
0: बैंकिंग, भुगतान, टिकट, सरकारी सेवाएं और संचार के कई साधन मोबाइल के माध्यम से उपलब्ध है। लेकिन कशिश, कई वरिष्ठ नागरिक तकनीकी से सहज नहीं होते। परिवार के युवा उनका मजाक बनाने के बजाय उन्हें धीरे धीरे सिखा सकते हैं। मोबाइल में संपर्क सेवा करना, वीडियो कॉल करना, जरूरी नंबर पहचानना, ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचना और संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करना जैसी बातें उन्हें समझाई जा सकती हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही बुजुर्गों को

0: भी बताया जाना चाहिए कि OTP, पैन, पासवर्ड और या बैंक से जुड़ी कोई भी गोपनीय जानकारी किसी अनजान व्यक्ति को नहीं देनी है। डिजिटल सुविधा तभी उपयोगी होगी श्रोता साथियों, जब उसके साथ डिजिटल सुरक्षा की समझ भी हो। श्रोता साथियों, वरिष्ठ नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार केवल मारपीट तक सीमित नहीं है, उन्हें लगातार अपमानित करना, उनकी बातों को नजरअंदाज करना, डराना, धमकाना, उनकी जरूरतों को जानबूझकर उपेक्षित करना, आर्थिक मामलों में अनुचित व्यवहार करना भी गंभीर समस्या हो सकती है।
1: बिल्कुल,
0: समाज को ऐसी घटनाओं पर चुप नहीं रहना चाहिए। अगर किसी बुजुर्गों को सहायता की आवश्यकता दिखाई दे तो परिवार, पड़ोसी और समुदाय के जो लोग हैं वो संवेदनशीलता से आगे आने चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: जरूरत पड़ने पर स्थानीय प्रशासन या संबंधित सहायता व्यवस्था से भी हम संपर्क कर सकते हैं। किसी बुजुर्गों की चुप्पी को उसकी मजबूरी समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए।
1: बिल्कुल, क्योंकि श्रोता साथियों, वरिष्ठ नागरिक दिवस केवल एक दिन बुजुर्गों को सम्मान देने का अवसर नहीं है, बल्कि ये हमें पूरे वर्ष उनके प्रति अपने कर्तव्यों को याद रखने की प्रेरणा देता है।
0: बिल्कुल,
1: वरिष्ठ नागरिक अंजलि जी हमारे परिवार और समाज की जड़ों के समान है। उनकी मेहनत, त्याग, अनुभव और संस्कारों ने समाज को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
0: जी हाँ,
1: हमें ये समझना चाहिए साथियों कि आज के युवा ही भविष्य में वरिष्ठ नागरिक बनेंगे, इसलिए जिस प्रकार के समाज की हम अपने लिए कल्पना करते हैं ठीक उसी प्रकार का सम्मान और सुरक्षा हमें आज के वरिष्ठ नागरिकों को भी देना चाहिए। उनके जीवन में सम्मान, सुरक्षा, स्वास्थ्य, आत्मनिर्भरता और खुशी सुनिश्चित करना हम सभी की जिम्मेदारी है।
0: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को यही कहना चाहेंगे कि बच्चों के लिए दादा दादी के साथ समय बिताना केवल मनोरंजन नहीं है, सीखने का अवसर भी है। बुजुर्ग बच्चों को धैर्य, मेहनत, रिश्तों की अहमियत, संघर्ष और जीवन की वास्तविकताओं के बारे में सिखाते हैं।
1: बिल्कुल,
0: आज बच्चों को हर सवाल का जवाब मोबाइल पर मिल जाता है, लेकिन जिंदगी के अनुभवों का जवाब इंटरनेट हमेशा नहीं दे सकता। किसी मुश्किल समय में शांत कैसे रहना है, कम संसाधन में जीवन कैसे चलाना है, रिश्तों में मतभेद होने पर बात कैसे करनी है और मुश्किल परिस्थितियों में हिम्मत कैसे बनाए रखनी है। कशिश, इन सवालों के कई जवाब हमारे बुजुर्गों के जीवन में छिपे हैं।
1: बिल्कुल,
0: उम्र बढ़ने के बाद व्यक्ति को घर के एक कोने तक सीमित कर देना उचित नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: अगर उनका स्वास्थ्य अनुचित होता है तो उन्हें सामाजिक और समुदाय गतिविधियों में शामिल किया जा सकता है। गांव की बैठक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पारंपरिक खेल, पौधारोपण अभियान जो है उसमें बच्चों के साथ कहानी सत्र, लोकगीत कार्यक्रम, अनुभव साझा करने वाली गतिविधियों में उनकी भागीदारी हम करा सकते हैं, अगर उनका स्वास्थ्य इन सारी चीजों को लेकर अच्छा हो तो। इससे उन्हें अपनेपन का अनुभव भी होगा और समुदाय का जो अनुभव है वो भी बच्चों को मिल पाएगा।
1: बिल्कुल अंजलि जी, तो जैसा कि बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता साथियों से कर ही रहे हैं, ये बातें आगे भी हमारी ऐसे ही जारी रहेंगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन अभी सुनते हैं यहाँ पर एक और प्यारा सा गीत।
0: जी हाँ,

0: दोस्तों इस गीत के बाद फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की और जैसा कि बातें ढेर सारी हो चुकी थी श्रोता साथियों गीत से पहले और हम जान पाए थे कि किस प्रकार से वरिष्ठ नागरिकों के बीच युवाओं की क्या भूमिका होती है।
1: बिल्कुल,
0: यही अंजलि जी बात करें तो वरिष्ठ नागरिक अनुभव की जीवित पुस्तक की तरह होते हैं।
1: जी हाँ।
0: जैसे कि उनके जीवन के अनुभव इतिहास, संस्कृति और सामाजिक बदलावों को समझने में बहुत उपयोगी होते हैं। श्रोता साथियों, वरिष्ठ नागरिकों को केवल देखभाल की आवश्यकता वाले व्यक्ति के रूप में नहीं देखना चाहिए, वे शिक्षा, सामाजिक सेवा, मार्गदर्शन, कला, साहित्य और सामुदायिक कार्यों में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: साथ ही उम्र बढ़ने के साथ उनमें अकेलापन, सामाजिक दूरी जो है वो व्यक्ति को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती है अंजलि जी, इसलिए उनसे बातचीत करना और उन्हें सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा। तो इस तरीके से हम श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि उम्र बढ़ने के बाद व्यक्ति को घर के एक कोने तक सीमित हमें नहीं रखना है, उनसे बातचीत हमेशा करते रहना है। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर हम केवल एक दिन बुजुर्गों को याद करके अपनी जिम्मेदारी पूरी न समझें।
0: बिल्कुल।
1: अपने घर में एक छोटा सा बदलाव करें, आज किसी बुजुर्ग के पास बैठें, उसकी बात सुनें, उनसे उनके जीवन की एक कहानी पूछें, उनसे कोई पुरानी परंपरा सीखें, उनकी जरूरत पूछें और सबसे बढ़कर उन्हें यह महसूस कराएं कि आप हमारे लिए आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं।
0: बिल्कुल,
1: क्योंकि कशिश जिंदगी एक पेड़ की तरह होती है, नई पत्तियां भविष्य का संकेत देती हैं लेकिन उसकी जड़ें उसे मजबूती देती हैं। हमारी नई पीढ़ी भी तभी मजबूत होगी जब वह अपनी पुरानी पीढ़ी के अनुभव और मूल्यों से जुड़ी रहेगी। वरिष्ठ नागरिक हमारे परिवार की कहानी के वे अध्याय हैं जिन्हें पढ़े बिना हम अपनी पूरी कहानी नहीं समझ सकते। हमें उनके जीवन को केवल बीते हुए समय के रूप में नहीं देखना चाहिए, उनके अनुभव आज भी हमारे काम आ सकते हैं। जरूरत तो बस इतनी सी है कि हम उनके पास बैठे, उनकी बात सुने, उनके अनुभव को आगे बढ़ाने का अवसर दें।
0: बिल्कुल।
1: उम्र बढ़ना जीवन का स्वाभाविक जीवन की स्वाभाविक यात्रा है, लेकिन श्रोता साथियों, उम्र बढ़ने के साथ सम्मान कम होना स्वाभाविक नहीं होना चाहिए।
0: जी हाँ।
1: हमें ऐसा परिवार, ऐसा समाज बनाना है जहाँ बुजुर्गों को सहारे की जरूरत पड़े तो हाथ आगे बढ़े, उनकी बात हो तो कान ध्यान से सुने और उनके अनुभव हो तो उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुँचाने का प्रयास किया जाए।
0: जी हाँ।
1: कहना चाहेंगे श्रोता साथियों, सम्मान दीजिए, संवाद बढ़ाइए और अनुभवों कि इस अमूल्य विरासत को आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाइए।
0: जी हाँ अंजलि जी, साथी श्रोता साथियों, हमें ये भी समझना चाहिए कि वरिष्ठ नागरिक हमारे समाज की जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारी अमूल्य पूंजी भी है।
1: बिल्कुल।
0: उन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार और समाज के निर्माण में लगाए हैं, इसलिए उनके जीवन के अंतिम पड़ाव को अकेलेपन और उपेक्षा से नहीं बल्कि प्रेम, सम्मान, सुरक्षा और अपनापन से भरना हमारा कर्तव्य है।
1: बिल्कुल।
0: साथियों, हम सभी को मिलकर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम अपने बुजुर्गों को केवल वरिष्ठ नागरिक दिवस पर ही नहीं बल्कि हर दिन सम्मान देंगे, उनकी बात सुनेंगे, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ उनके अनुभवों से सीखेंगे।
1: जी हाँ।
0: क्योंकि बुजुर्गों का सम्मान हमारी संस्कृति की पहचान है और उनका आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है।
1: बिल्कुल कशिश, आपने सही कहा, वरिष्ठ नागरिक दिवस हमें केवल बुजुर्गों की उम्र याद करने का अवसर नहीं देता बल्कि यह सोचने का अवसर देता है कि हम उनके साथ किस तरह व्यवहार कर रहे हैं और आने वाले समय में अपने लिए कैसा समाज तैयार कर रहे हैं। आज जो बुजुर्ग हमारे परिवार का हिस्सा हैं, उन्होंने कभी अपने माता पिता की उंगली थामी थी और फिर अपने बच्चों की राह आसान करने में अपना जीवन लगा दिया। जब जीवन के इस पड़ाव पर उन्हें बदले में किसी बड़े उपकार की नहीं बल्कि सुरक्षा, सम्मान, अपनापन और अपनी बात कहने की जगह की जरूरत है। हमारे समाज की असली मजबूती केवल नई तकनीक, बड़ी इमारतों या आर्थिक विकास से नहीं मापी जा सकती।
0: हाँ।
1: यह भी देखना होगा कि समाज अपने सबसे अनुभवी और उम्रदराज सदस्यों के साथ कैसा व्यवहार करता है।
0: बिल्कुल।
1: जिस घर में बुजुर्गों को सम्मान मिलता है वहां बच्चों को भी रिश्तों की कीमत समझने का अवसर मिलता है। इसलिए वरिष्ठ नागरिकों का सम्मान केवल उनके लिए किया गया कार्य नहीं बल्कि यह नई पीढ़ी के चरित्र निर्माण में भी किया गया निवेश है।
0: जी हाँ अंजलि जी, तो जैसा कि इस तरीके से आज के इस कार्यक्रम में बातें हमारे श्रोता साथियों से हमारी ढेर सारी हो चुकी हैं।
1: बिल्कुल।
0: और समय भी अब हमारा हो चला है कार्यक्रम से विदा लेने का, तो विदा तो हम जरूर लेंगे लेकिन जाने से पहले क्यों ना हमारे कार्यक्रम का पता

0: साथ में, तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपकी अपनी साथी अंजलि पाराशर
1: और आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
2: नमस्कार।
1: साथी दोस्तों, आप सभी को छोड़े चलते हैं एक और प्यारे से गीत के साथ में।

थारी में पासो लावो जूनू हवार, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी, नमक का ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारती नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो। मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त और इस कार्यक्रम के होस्ट कशिश पारशर। जैसे कि श्रोता साथियों, आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश का सिलसिला

हमारा आपके साथ बना रहता है सोमवार से शनिवार सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक। और इसी बीच दोस्तों, आप अपनी फरमाइश गीतों के लिए हमें व्हाट्सएप एसएमएस करते हैं। साथियों, अगर आप भी हमारे कार्यक्रम में नए हैं और आप भी अपने फरमाइश के गीत सुनना चाहते हैं, हम तक पहुंचाना चाहते हैं, ज़रूर पहुंचा सकते हैं व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से। आपको करना कुछ नहीं है साथियों, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर पर एसएमएस करना है, लिखना है फिल्म का नाम, गीत के बोल, आप कहां से इस फरमाइश को सुनना चाह रहे हैं वहां का आपको नाम लिखना है, साथ ही फरमाइशकर्ताओं के नाम लिखकर भेज देना है व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 9414082643। नंबर फिर से बताना चाहूँगी, हमारा नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, इंतज़ार रहेगा हमें आपकी फरमाइश गीतों का। अब जैसा कि कार्यक्रम का सिलसिला शुरू हो चुका है, ढेरों फरमाइशें कार्यक्रम के माध्यम से आ ही रही हैं, तो मैं बढ़ना चाहूँगी पहली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों, पहली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है गंजू द्वारा उत्तर प्रदेश से। फिल्म का नाम है तहलका, गीत के बोल हैं दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। इस गीत को आवाज़ दी है कुमार सानू जी, अनुराधा पोडवाल जी ने। फरमाइशकर्ता जुड़ना चाह रहे गंज द्वारा उत्तर प्रदेश से, मास्टर किल्लू परवेज बेगम, इमरादा नाज, नाजिश शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी, राधा नाम देव जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी जुड़ रहे हैं पाडी कला से भूमिका कुंवर, नरेश चौहान, मनोज कुमार मीणा, मेघराज मीणा, सुरेश कुमार चौहान, विक्रम सिंह, लक्ष्मण चौधरी, चंद्रपाल जी, महावीर प्रसाद, देवीलाल, राजा राम, मनसाराम, संदीप जी, और भी हमारे दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। परतापुर से जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथी सत्येंद्र नरेश चौहान, जयवर्धन मीनारिया, सत्यम मीणा, शिवम, संजीव कमलेश जी। घाटोल से हैं रोहित शर्मा और वैजेंद्र कुमार जी, अरुण शर्मा और गणेश लाल, जसवंत, संजय, अखिलेश, हेमराज मीणा, चरण सिंह और श्याम प्रसाद जी। और भी हमारे श्रोता साथी जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से इरशाद अमन अंसारी, कामरान इरशा, अदमा इज्जा, अजरा तबस्सुम जी। बनारस से हैं मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौरीन अंसारी, आफिया परवीन, मोहम्मद कैफ अंसारी जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं दिल दीवाने का डोला दिलदार के लिए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश के गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूंगी। फरमाइश आई है हमारे बीच कुशलगढ़ से, फिल्म का नाम है साथियों, संगीत गीत के बोल हैं, और अब्बा कोई तो बताए इश्क होता है क्या। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। आपको बताना चाहूंगी कुशलगढ़ से हैं अरुण सिंह जी, गणेश लाल, जसवंत कुमार, संजय, अखिलेश जी, हेमराज मीणा, चरण सिंह, श्याम प्रसाद, वजेंद्र, रोहित, कमलेश जी। साथ ही जुड़ रहे हैं और भी सत्येंद्र चौहान, नरेश चौहान, जसवर्धन चौहान, हरिवर्धन चौहान, और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। श्रोता साथी रायबरेली से हैं मेघराज मीणा, राहुल शर्मा, पंकज रामलाल, श्यामलाल, दलपत विकास, हरेंद्र, विपिन शर्मा, देवेश जी, आकाश, हेमंत, हीरालाल जी। और भी श्रोता साथी हैं जो जुड़ रहे हैं रायबरेली से, हंसराज विकास, वीरेश चौहान जी, मिथिलेश कुमार जी, वीरेंद्र कुमार जी, देवेंद्र कटारा जी, राधेलाल सिंह, संदीप चौहान, गणेश लाल, रामेश्वरम प्रजापति जी, अवधेश कुमार, सुदरलाल और युकेश कुमार जी, दीपक कुमार जी, अनुप चौहान जी, मयेघराज मीणा जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं और अब्बा कोई तो बताए। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं अगली फरमाइश के गीत की ओर। साथियों अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, मैं आपको बताना चाहूँगी। जुड़ना चाह रहे हैं मड़ियाऊ जौनपुर से श्रोता साथी, सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, बताना चाहूँगी फिल्म का नाम है श्रोता साथियों अमराव चांद, गीत के बोल हैं इन आँखों की मस्ती। फरमाइश करता है इस गीत के जुड़ना चाह रहे हैं जौनपुर से इरशाद अमन अंसारी, कामरान इरशाद, अरमा इशा, अजरा तबस्सुम, नवेद इरशाद। बनारस से मास्टर अब्दुल मजीद अंसारी, नौनिन आफिया मोहफिन कैफ अंसारी जी। और भी हमारे दोस्त कौरबा से जुड़ रहे हैं छत्तीसगढ़ से, सावित्री देवी ठाकुर, कमल सिंह ठाकुर, लक्ष्मी ठाकुर, अवि सिंह ठाकुर, मानुषानु भुवन मनुहा, ईश्वर सिंह ठाकुर, हरिप्रिया जी, कमल सिंह ठाकुर जी। उत्तर प्रदेश से श्रोता साथी हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। मस्तानपुरा पुरना जंक्शन से अनंता भगत, अनुरा चेतन, सुलोचना भगत। बागपत उत्तर प्रदेश से आसिफ अली खान, मोमिना नास, मुस्कान, सादिक अली खान, सारिक अली खान। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी डिकेस्टो, पल डिकेस्टो, विलिस डिकेस्टो जी। सहारन उत्तर प्रदेश से हैं राधा नामदेव, अभिषेक नामदेव, अर्पणा नामदेव जी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं साथियों की फरमाइश के गीत के साथ में, गीत के बोल हैं इन आँखों की मस्ती। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का बहुत ही प्यारा सा गीत था, दोस्तों की इन आंखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इस प्यारे से गीत को आवाज़ दी थी आशा भोसले जी ने। अब इसी गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश का गीत हमारे बीच आया है, बताना चाहूँगी, बिहार कॉलोनी दिल्ली से। फिल्म का नाम है कसूर। गीत के बोल हैं, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली हूँ। इस गीत को आवाज़ दी उदित नारायण जी, अलका याग्निक जी ने। फरमाइश करता है, दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राय, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन। चंडीगढ़ से राहुल रचिता किशोरी दान खुराना जी। अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुणा ने, अर्चना ताई गुणा ने, प्रेम प्रसिद्धि हीरामन शेंडे, प्रतिभा गुणा ने, महेश रोमटेके जी। जुड़ना चाह रहे हैं बागपत से जगमोहन सिंह प्रजापत, मुनीश देवी, अर्जुन भारती, अंजलि नितिन जगमोहन, सुधुनितिन, शिषपाल अकेला जी, तेजपाल प्रजापति जी। दुर्गा कॉलोनी हांसी से हैं राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, बब्बू डब्बू जी। भिलाई छत्तीसगढ़ से हैं, दोस्त जुड़ रहे हैं, दीपक खट्टक, प्रमिला खट्टक, चंद्रशार सारनपुर से सुरेंद्र डोमेंद्र, सोनाली डोमेंद्र, डोली लोहारा से डोलो मिन्हास और प्रभा मिन्हास जी। जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पुनम गगनेजा, विशाल प्रिया, दिशानी और निमित आहूजा जी। धनौरी तेलीवाला से हैं निशार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया, आयान बाबू जी। वसीम महाराष्ट्र से हैं मास्टर विठल सुरोशे, सुषमा सुरोशे, परदेश सुरोशे, मायरा सुरोशे जी। बक्सर शहर से हैं फातिमा राज, बेबी अंसारी, डब्ल्यू अंसारी जी। तो आइए साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश किस गीत को। गीत के बोल हैं, कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली हूँ। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था कितनी बेचैन होके मैं तुमसे मिली, इस गीत के बाद साथियों फिर से बढ़ते हैं हमारी अगले फरमाइश की गीत की ओर। अगले फरमाइश का गीत आया है मस्तानपुरा पुन्ना जंक्शन से। फिल्म का नाम है ईमानदार, गीत के बोल है और इस दिल में। फरमाइशकर्ता जुड़ रहे हैं इस गीत के साथ में, पुन्ना जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा चेतन, सुलोचना भगत साथी जुड़ रहे हैं और भी जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। सूरपुर से हैं पन्ना लाल जी, जसवंत कुमार, रविशंकर गुप्ता, रमेश प्रसाद, बंटी प्रजापत, मनोहर जी और भी हमारे श्रोता साथी हैं जुड़ रहे हैं, हनुमंत, ओमकार रावत, सीताराम, राधेलाल, दिनेश चंद्र, विशाल शर्मा जी, संतोष पांडे, मेघराज मीणा जी। इसी बीच साथी जुड़ना चाह रहे हैं जो पसंद करते हैं इसी गीत को, घाटोल से जुड़ रहे हैं रविंद्र शर्मा, सत्येंद्र, रामसेवक शर्मा, राकेश शर्मा, राम सहाय जी, शिवम कुमार, भैयालाल चौहान जी, भोला भाई, अखिलेश कुमार, सतीश कुमार और आनंद शर्मा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं रायबरेली से भी मेघराज मीणा, प्रेम डामोर, खुशवंत डामोर, अरुण सुरेंद्र और दिनेश कटारा, लाला राम, किशोर प्रसाद, सीताराम, देवीराज जी, प्रमोद प्रजापति जी, रतन कुमार, दीपक कुमार जी। तो आइए श्रोता साथियों सुन लेते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं और इस दिल में। तब तक आप बने रहिएगा साथियों कार्यक्रम आपकी फरमाइश में और सुनते रहिएगा वागड़ रेडियो 90.8 FM।

श्रोता साथियों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था और इस दिल में क्या रखा है, इसी गीत के बाद हम फिर से बढ़ते हैं हमारी अगली फरमाइश की गीत की ओर। दोस्तों, अगली फरमाइश हमारे बीच आई है नादेड़ येतला महाराष्ट्र से। फिल्म का नाम है मल्हार। गीत के बोल हैं, बड़े अरमानों से रखा है बलम। ये फरमाइश हमारे बीच आई है येतला महाराष्ट्र से और इस गीत को आवाज़ दी है साथियों लता मंगेशकर और मुकेश जी ने। फरमाइश करता है, इस गीत के साथ जुड़ना चाह रहे शंकर लाल जयसवाल, गणेश लाल जयसवाल, शुभम प्रसाद जयसवाल, अरणय जयसवाल, राखी जयसवाल, दुर्गेश्वरी जयसवाल, तृप्ति जयसवाल। इसी बीच हमारे और भी दोस्त हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। नाम बताना चाहूँगी साथियों, जुड़ रहे हैं मुरादाबाद से अजित कसाना, मया देवी रितिकादित्य कसाना जी। इसी बीच और भी श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। आपको नाम बताना चाहूँगी, आकोट महाराष्ट्र से हैं नितिन पाटिल, नलिनी पाटिल जी। इसी बीच हमारे और भी साथी जुड़ना चाह रहे हैं, रायबरेली से मेघराज मीणा जी, सत्येंद्र राम सेवक जी, राकेश रामसाई, शिवम कुमार, भैयालाल भुला भाई जी। और दोस्त जुड़ रहे हैं आमेट मेरठ से हैं अनिल जैन, सेम जैन, मुस्कान मास्टर जी, विम जैन, आदि जैन, अंश जैन, भव्य जैन, अंशिका जैन। और भी हमारे श्रोता साथी हैं जो इसी गीत के साथ अपना मनोरंजन करना चाह रहे हैं। कोटा से हैं अंकुर सामरिया, विजय कुमार, विक्रम, राघवेंद्र कुमार, जरविंदर, जसविंदर कुमार, गिरधिराज, रामेश्वरम, राहुल कुमार जी। घाटोल से हैं राधेलाल, अरविंद शर्मा जी, सियाराम, जालाराम और मेघराज मीणा जी और संजय जी। तो आइए श्रोता साथियों, सुनते हैं दोस्तों की फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम। तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

दोस्तों, जैसा कि बहुत ही प्यारा सा गीत था, बड़े अरमानों से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में पहला कदम। इस गीत के बाद फिर से बढ़ते हैं साथियों अगली फरमाइश की ओर। अगली फरमाइश हमारे बीच आई है बड़ोदिया से। फिल्म का नाम है साथियों, आपको बताना चाहूँगी, सलाम इश्क। गीत के बोल हैं, या रब्बा कोई तो बताए। फरमाइश करता जुड़ना चाह रहे हैं बड़ोदिया से कमलेश बुनकर, छाया सोनी जी, जलद जोशी, हेमंत टेलर, चंद्रपाल कुशवाहा जी। इसी बीच जुड़ना चाह रहे हैं पृथ्वीगंज से हमारे श्रोता साथी निवेदिता सिंह, रोहित समरिया जी, रोहित रोमेन जी, धनराज जी। रायबरेली से मेघराज मीणा, अखिलेश कुमार, पूरण कुमार, किशनलाल, शैलेंद्र कुमार, राजेंद्र कुमार, राकेश शर्मा जी, समुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुनलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक, कुमारी पूजा खटक। जुड़ना चाह रहे हैं कुशलगढ़ से गंगाराम प्रजापति, अभिषेक वर्मा, सिद्धार्थ पंड्या, मानसिंह किराणा जी और महेश चंद्र शर्मा, शिवदयाल, समूहदाल दयाल जी। बाटापरा छत्तीसगढ़ से है सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, धनेश तिवारी, सावन नायक, अंकिता जोशी, वेदही जोशी। तो आइए श्रोता साथियों मनोरंजन करते हैं श्रोता साथियों की फरमाइश के इस गीत के साथ में। गीत के बोल हैं या रब्बा, तब तक आप बने रहिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश में।

हेलो दोस्तों, मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी साथी अंजलि पारेश्वर। आप सभी का एक बार फिर से साथियों तहे दिल से स्वागत करना चाहूंगी कार्यक्रम आपकी फरमाइश में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम आपकी फरमाइश में जब भी हम आपके माध्यम से जुड़ते हैं तो कार्यक्रम में बहुत ही प्यारे से गीत संगीत के साथ में हम आपको मनोरंजन करवाते हैं जो कि आपकी फरमाइशों की गीतों के आधार पर होते हैं। तो श्रोता साथियों, जैसा कि फरमाइशों का सिलसिला बहुत अच्छा चल रहा है, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा और फिल्म का नाम है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी। फरमाइश करता है इस गीत के साथियों, नाम बता दें आप सभी को, अजीत कसाना, माया देवी, ऋतिक आदित्य कसाना, लदावली जिला मुरादाबाद से हैं ये। और भी दोस्त हैं जो सुनना चाह रहे हैं इस गीत को, नाम बता दें आप सभी को, कमलेश, रेखा और सौम्या। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं चुरा के दिल मेरा गोरिया चली।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, इसी बीच अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है भाग मिल्खा माँ भाग, गीत की बोल है मेरा यार। फरमाइश करता है इस गीत की, रामगढ़ से है आकाश, प्रिया, रोहित, मुस्कान, अंकित, राधिका, सोनू, इसी के साथ नीमका थाना से जुड़ रहे हैं मोहित, पूजा, राहुल, नेहा, दीपक, काजल, पवन, आदित्य, ज्योति, विकास, कोमल, निखिल, साक्षी और गौरव। शिवाड़ा से है आयुष, पायल, करण, तन्वी, विवेक, शालू, मनीष, अभिषेक, रिया, रवि, अंजलि, नितिन, नेहा, विशाल। नवलगढ़ से है राहुल, काव्या, दीपक, पूजा, आशीष, निशा और यश, रोहित, सिमरन, अंकित, प्रिया, कपिल, रानी और आकाश। रिंगस से है करण, खुशी, विकास, दिव्या, मयंक, सोनम, रवि, मोहन, आरती, पवन, काजल, देव, शिवानी, सचिन, निखिल, राधिका, गौरव, पूजा, अमन और ज्योति, राहुल। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपके फरमाइश किस गीत को, गीत के बोल है मेरा यार।

साथियों, भी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है घायल। गीत की बोल है, कोई जाए तो ले आए। फरमाइश करता है इस गीत के रेवाड़ी से है मोहित, नेहा, दीपक, पायल, अंकित, रिया, सुरेश, आकाश, पूजा, रोहित, काजल, विकास, अक्षर, पवन। इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं झज्जर से हैं करण, ज्योति, अमित, तन्वी, विवेक, सोनू और नेहा। रोहतंग से हैं आदित्य, रिया, दीपक, पूजा, मनीष, सिमरन, आशीष। इसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं श्रोता साथियों विकास, कोमल, राहुल, आरती, पवन, खुशी और गौरव कनेरे। जित से हैं आकाश सोलंकी, नेहा, कपिल, प्रिया, दीपक राव और राधिका रानी। सिरसा से हैं अभिषेक, पूजा सोलंकी, रवि, काजल और अंकित यादव, निशा, मयंक, नितिन, रिया, रोहित, सोनम, आशीष, ज्योति और अमन। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल है, कोई जाए तो ले आए।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल है मन की लगन। फरमाइश करता है इस गीत के बुलंदशहर से है कृष्णा छिंदे, राधिका, मोहित, पूजा, राहुल, नेहा, दीपक, आदित्य, प्रिया, रोहित, काजल, अंकित, रिया और पवन बुलंदशहर से हैं। आकाश, साक्षी, विकास, पूजा, निखिल, मुस्कान और गौरव, राहुल, ज्योति, करण, नेहा, कुलदीप और संदीप गुगलानी अलीगढ़ से हैं। अभिषेक, काव्या, रोहित, रिया, नितिन, प्रिया, आशीष और खंडवा से हैं। अंकित, शिवानी, विवेक, पूजा, मोहित यादव, सोनम और विकास। इसी के साथ श्रोता साथियों जुड़ना चाह रहे हैं इसी गीत के साथ में, शिवपुरी से हैं पवन, आरती, दीपक, प्रिया, निखिल, खुशी, रोहित, मोहन, पूजा, आकाश, राधिका, राहुल, आदित्य, नेहा, करण, प्रिया, अंकित, काजल, विवेक, ये सभी लखनऊ से हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं मन की लगन।

साथियों, अगली फरमाइश आई है। फिल्म का नाम है आज का अर्जुन। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया। इस गीत को आवाज दी है शब्बीर कुमार और लता मंगेशकर जी ने। फरमाइश करता है इस गीत की, जौनपुर से है इरशाद अहमद अंसारी, कमरान इरशाद, नाविद इरशाद, अजरा तबस्सुम। बनारस से है महेश, पूजा, राकेश, रानी, जितेंद्र, शिल्पा, अनिल और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं इस गीत के साथ में। गोरखपुर से हैं अभय, काजल, पवन, रिया, आशीष, निखिल, आदित्य, पूजा, मोहित, रिया, विवेक, काजल और शुभम। राजकोट से हैं ध्रुव, मीत, जय, किंजल, सोलंकी, रिया और भावना, हार्दिक इसी के साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, नेहा, राहुल, पूजा, गौरव, रानी और अमित ये सभी छत्तीसगढ़ से हैं। सुनीता, प्रिया, आकाश, ज्योति, पवन और साक्षी, दीपक ये झारखंड से हैं। तो आइए दोस्तों सुनते हैं आपके फरमाइश के इस गीत को। गीत के बोल हैं गोरी है कलैया।

साथियों, अभी हमने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना लता मंगेशकर और सुबीर कुमार की आवाज़ में, गोरी है कलैया। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, गीत के बोल हैं सुना सुना। फरमाइश करता है इस गीत के बुराज से है महेंद्र, पूजा, मोहित, नेहा, राहुल, काजल और पवन। छोटा गांव से हैं सुरेश कुमार, शारदा, कविता, पूजा, पिंकी। रूपपुरा से हैं रोहेंद्र जोशी, निखिल जोशी, कविता जोशी और पायल जोशी। शामखेड़ा से हैं पवन जैन, राधिका जैन, अमित जैन, काजल जैन, मुस्कान जैन और रवि जैन। नया गांव से हैं महेश सोलंकी, काजल सोलंकी, मोहित सोलंकी, प्रिया, निखिल और आरती विवेक। बड़वाड़ी से हैं कैलाश शर्मा, नेहा शर्मा, पवन, साक्षी, रोहित, काव्या और गौरव। धनपुरा से हैं राजेंद्र गनेजा, पूनम गनेजा, आयशा, कविता और मुस्कान। जेतपुर से हैं सुरेश, रिया, करण, पूजा, निखिल, साक्षी, पवन यादव। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, गीत के बोल हैं सुना सुना।

साथियों, अभी हमने श्रेया घोषाल और अनु मलिक की आवाज़ में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। इसी बीच अगली फरमाइश आई है, फिल्म का नाम है निगाहें। गीत के बोल हैं, सारा सारा दिन तुम काम करोगे। फरमाइश करता है इस गीत की चांदपुरा से हैं राजेश रानी, निखिल ज्योति, आशीष पूजा, यश मध्य प्रदेश से हैं, महेश साक्षी, पवन पूजा, करण, रिया, दीपक, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। रामगढ़ गांव से है लोकेश जोशी, सोनिया जोशी, मनमोहन सिंह झा और हरीश चंद्र शेखर, आरती, रोहित, प्रिया, मनीष, ज्योति, और भी दोस्त हैं जो जुड़ना चाह रहे हैं। मुजफ्फरपुर बिहार से हैं मनीष, आरती, विकास, श्वेता, रवि, काजल, निखिल, पंकज डामू, रानी, मुकेश, पूजा, नीरज, ज्योति, राहुल, ये गया से हैं। तो आइए दोस्तों, सुनते हैं आपकी फरमाइश के इस गीत को, और यही हमारे फरमाइश कार्यक्रम का अंतिम गीत है।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।

शुभ संध्या श्रोता साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM, आपका रेडियो आपकी आवाज, और मैं हूं आप सभी के साथ आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। साथियों, लेकर हाजिर हो चुकी हूं आज के इस शाम के सुहाने पल में हमारे आज के खास कार्यक्रमों की रूपरेखा। साथियों, दिन भर की भागदौड़ और जिम्मेदारी के बाद जब शाम ढलती है तो मन चाहता है कि थोड़ा सुकून, थोड़ा ज्ञान और थोड़ा मनोरंजन हो जाए, और इन सभी रंगों को लेकर आपके साथ है आपका अपना वागड़ रेडियो। तो साथियों, आइए जानते हैं आज की शाम के कार्यक्रमों के बारे में। सबसे पहले शाम 5 बजे शुरू होगा कार्यक्रम आराधना, भक्ति और आस्था से भरे सुरों को लेकर, जो मन को शांति देते हैं और आत्मा को सुकून। दिन भर की थकान को बुलाकर साथियों, ईश्वर के स्मरण के साथ इस खूबसूरत शाम की शुरुआत कीजिए। इसके बाद शाम 5:30 पर प्रस्तुत होगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज, क्योंकि युवा ही भविष्य की सबसे बड़ी शक्ति है। यह मंच है युवाओं के विचारों का, उनके सपनों का और उनके जज्बे का। साथियों, इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी आपकी अपनी रेडियो साथी कशिश पाराशर यानी कि मैं और जागृति भट्ट। आगे बढ़ते हुए इसे शाम 6 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा बचपन, जो मासूमियत, मुस्कान और सपनों से भरा होता है। साथियों, इस कार्यक्रम में होंगी बचपन की कुछ सीखे, मीठी यादें। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और कशिश पाराशर यानी कि मैं। इसके बाद दोस्तों, शाम 6:30 पर हम सुनेंगे कार्यक्रम खेतीबाड़ी, जो कि हमारे किसान भाइयों के लिए समर्पित कार्यक्रम है। इसमें आप जानेंगे खेती से जुड़ी तकनीक, मौसम की जानकारी और कृषि विशेषज्ञों की उपयोगी सलाह के बारे में। इसे लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और उनके साथ होंगे जागृति भट्ट। इसके आगे दोस्तों, शाम 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। साथियों, ये कार्यक्रम हमें हमारे समाज, देश और सच्चाई से जुड़ी उन बातों से रूबरू करवाता है, जो हमें जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने की प्रेरणा देते हैं। तो भूलिएगा नहीं, शाम 7 बजे कार्यक्रम सच्चा स्वराज। इसी के बाद दोस्तों, हम फिर से रुक करेंगे 7:30 पर और सुनेंगे कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। इस कार्यक्रम में आप जानेंगे डॉक्टरों की सलाह, योग से जुड़ी ढेर सारी बातें और बीमारियों से बचाव के तरीके। इस कार्यक्रम को लेकर आऊंगी मैं यानी कि आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर। तो जैसा कि साथियों, कार्यक्रम की रूपरेखा तो हम जान ही रहे हैं दोस्तों, इसी के बाद हम बढ़ेंगे हमारे अगले कार्यक्रम की ओर, कार्यक्रम समस्या समाधान, जिसमें आप सभी जानेंगे श्रोता साथियों नई नई समस्याओं और उनसे जुड़े समाधानों के बारे में। इस कार्यक्रम को लेकर आएंगी हमारी रेडियो साथी अंजलि पाराशर और जागृति भट्ट, जिसे आप सभी सुन पाएंगे ठीक 8 बजे। इसी के बाद दोस्तों, अगला कार्यक्रम होगा मनोरंजक गीत कार्यक्रम। ये है साथियों पुराने और नए गीतों का ऐसा खूबसूरत संगम, जो आपके दिल को छू जाएगा और शाम को और भी यादगार बना देगा। और इसके बाद रात 9 बजे प्रस्तुत है हमारा खास कार्यक्रम शामे गजल, जहां गूंजेंगे दिल को छू लेने वाले अल्फाज, मधुर गजलें और सुकून भरे नगमे, जो इस सुहानी रात को और भी खास बना देंगे। तो साथियों, शाम की ये घड़िया सिर्फ समय नहीं होती, बल्कि भावनाओं का एक खूबसूरत सफर होती है, जहां भक्ति का सुकून भी है, युवाओं के सपने भी हैं और बचपन की हंसी भी है, साथ ही किसान की मेहनत भी है और संगीत का वो जादू भी है जो आपके दिल को छू जाएगा। यही है हमारी शाम और यही है हमारा वागड़ रेडियो। तो आइए साथियों, अब शुरुआत करते हैं आज के पहले कार्यक्रम आराधना से। आप सुनते रहिए वागड़ रेडियो 90.8 FM।

0: पिता सदा ही अपने संतान के सुख की कामना करते, उनके भविष्य की चिंता करते रहते। इसी कारणवश सदा ही अपने संतानों के भविष्य का मार्ग स्वयं निश्चित करने का प्रयत्न करते रहते। जिस मार्ग पर पिता स्वयं चला है, जिस मार्ग के कंकर पत्थर को स्वयं देखा है, मार्ग की छाया मार्ग की धूप को स्वयं जाना है, उसी मार्ग पर उसका पुत्र भी चले, यही इच्छा रहती है हर पिता की। निसंदेह उत्तम भावना है ये, किंतु तीन प्रश्नों के ऊपर विचार करना हम भूल ही जाते हैं। कौन से प्रश्न? प्रथम प्रश्न, क्या समय के साथ प्रत्येक मार्ग बदल नहीं जाते? क्या समय सदा ही नई चुनौतियों को लेकर नहीं आता? तो फिर बीते हुए समय के अनुभव नई पीढ़ी को किस प्रकार लाभ दे सकते हैं? दूसरा प्रश्न, क्या प्रत्येक संतान अपने माता पिता की छवि होता है? हाँ, संतानों को संस्कार तो अवश्य माता पिता देते हैं, किंतु भीतर की क्षमता तो ईश्वर देते हैं। तो जिस मार्ग पर पिता को सफलता मिली है, विश्वास है कि उसी मार्ग पर उसकी संतानों को भी सफलता और सुख प्राप्त होगा। तीसरा प्रश्न, क्या जीवन के संघर्ष और चुनौतियां लाभकारी नहीं होती? क्या प्रत्येक नया प्रश्न एक नए उत्तर का द्वार नहीं खोलता? तो फिर संतानों को नए नए प्रश्नों, संघर्षों और चुनौतियों से दूर रखना, ये उनके लिए लाभ करना कहलाएगा या हानि पहुंचाना? अर्थात जिस प्रकार संतान के भविष्य का निर्माण करने के बदले उसके चरित्र का निर्माण करना श्रेष्ठ है, वैसे संतानों के जीवन का मार्ग निश्चित करने के बदले उन्हें नए संघर्षों के साथ जूझने के लिए मनोबल व ज्ञान देना अधिक लाभदायक नहीं होगा?
1: आप सुन रहे हैं आराधना, आपके अपने वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

0: भूमि आवंटन हो, दाखिल खारिज हो या राजस्व विभाग ने प्रक्रिया, हर बोना ने मले सही जानकारी, सही मार्गदर्शन ने बराबरी नो अधिकार। याद रखो, जई बोन सशक्त थाए यस विकास नो सही रास्तो निकरे है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: कार्यक्रम युवाओं की आवाज सुनने वाले हमारे सभी युवा साथियों को आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ साथियों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में।
1: जी हाँ साथियों, लेकर हाजिर है कार्यक्रम युवाओं की आवाज को एक नए विषय के साथ में। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारी बातें रहने वाली है कि अगर कम समय में बेहतर काम करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीतियों को बनाना होगा।
0: बिल्कुल,
1: अक्सर हम कहते हैं कशिश की समय नहीं मिलता, काम बहुत ज्यादा है, दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरा ही नहीं हो पाता। लेकिन क्या श्रोता साथियों, समस्या वास्तव में समय की कमी है? समस्या होती है समय का सही इस्तेमाल न कर पाने पर। तो आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम जानेंगे कुछ व्यवहारिक रणनीतियों के बारे में जिन्हें हम अपनाकर अपने काम को ज्यादा व्यवस्थित, प्रभावी और बेहतर बना सकते हैं।
0: जी हाँ जागृति जी, तो इसी विषय को लेकर कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों से ढेर सारी बातें हम करेंगे, लेकिन शुरुआत में सुनते हैं पहले एक प्यारा सा गीत।
1: जी हाँ,
0: तो श्रोता साथियों आप बने रहिएगा कार्यक्रम युवाओं की आवाज में आपकी अपनी दोस्त कशिश पाराशर
1: और आपकी अपनी साथी जागृति भट्ट के साथ में।

0: साथियों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम युवाओं की आवाज में। जैसा कि दोस्तों गीत से पहले विषय बता चुके हैं कि आज हम आपसे बात कर रहे हैं कि अगर हम अपने काम को कम समय में बेहतर करना चाहते हैं तो हमें कुछ रणनीति अपनाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपने गीत से पहले बताया था जागृति जी कि अक्सर हमने लोगों को ये कहते सुना है कि उनके पास समय ही नहीं किसी काम को करने का और दिन कैसे निकल जाता है उन्हें पता ही नहीं चलता।
1: बिल्कुल।
0: तो कार्यक्रम के माध्यम से आज युवा साथियों हम कुछ ऐसी रणनीति आपके लिए लेकर आए हैं जिन्हें अगर आप अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप बेहतर तरीके से अपने काम को पूरा कर सकते हैं।
1: जी हाँ कशिश,
0: जैसे कि अगर पहली रणनीति की बात करें तो काम की प्राथमिकता तय करना बहुत जरूरी है जागृति जी।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हमारे पास दिन भर में करने के लिए कई काम होते हैं लेकिन हर काम समान रूप से जरूरी नहीं होता। इसलिए श्रोता साथियों दिन की शुरुआत में खुद से पूछिए कि आज ऐसा कौन सा काम है जिसे पूरा करना सबसे जरूरी है।
1: जी हाँ,
0: जरूरी कामों की एक छोटी सी आप सूची बनाइए और उन्हें प्राथमिकता के आधार पर क्रम में दीजिए श्रोता साथियों। जैसे कि उदाहरण के लिए अगर किसी विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी करनी है और प्रोजेक्ट भी तैयार करना है, मोबाइल पर दोस्तों के संदेशों का जवाब भी देना है तो पहले पढ़ाई, प्रोजेक्ट, फिर जरूरी काम पूरे करने होंगे और यही श्रोता साथियों बेहतर रहेगा। याद रखिए व्यस्त रहना और उत्पादक होना दोनों अलग अलग बातें हैं। पूरे दिन व्यस्त रहने के बजाय सही काम को सही समय पर करना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है साथियों।
1: जी हाँ कशिश, क्योंकि आज हमारा ध्यान सबसे ज्यादा भटकता है, काम करते करते मोबाइल देखना, नोटिफिकेशन चेक करना, सोशल मीडिया खोलना और फिर दोबारा काम पर लौटना, इससे समय भी जाता है और ध्यान भी हमारा टूट जाता है।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों कोशिश करें कि जब कोई महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं तो कुछ समय के लिए केवल उसी पर ध्यान दें। अपने आप से कहें कि अभी सिर्फ यही काम करना है। उदाहरण के लिए यदि आपको किसी कार्यक्रम की स्क्रिप्ट लिखनी है तो उस दौरान बार बार मोबाइल देखने के बजाय पहले स्क्रिप्ट पूरी करने पर ध्यान दें।
0: जी,
1: एकाग्रता बढ़ने से काम की गति के साथ साथ उसकी गुणवत्ता भी बेहतर होती है।
0: बिल्कुल। इसी के साथ दोस्तों कई बार बड़ा काम देखकर हमें लगता है कि यह बहुत मुश्किल है और इसे शुरू करने का हमारा मन ही नहीं करता।
1: बिल्कुल।
0: ऐसे में जागृति जी बड़े कामों को छोटे छोटे हिस्सों में हम बांट सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए साथियों कि आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट तैयार करना है तो एक साथ पूरा प्रोजेक्ट करने के बजाय आप उसे अलग अलग चरणों में बांट सकते हैं। पहले जानकारी जुटाना, फिर रूपरेखा बनाना और उसके बाद लिखना और अंत में जांचना। दोस्तों छोटे लक्ष्य आसानी से पूरे होते हैं और हर छोटी सफलता आपको आगे बढ़ने का उत्साह देती है।
1: जी हाँ।
0: इसलिए बड़ा काम देखकर घबराइए मत, उसे छोटे छोटे कदमों में बदल दीजिए।
1: बिल्कुल कशिश, क्योंकि आज के समय में हमारा सबसे बड़ा समय चोर कई बार हमारा अपना मोबाइल बन जाता है। हम सोचते हैं कि केवल दो मिनट सोशल मीडिया देखेंगे लेकिन हमें पता ही नहीं चलता और वो काफी समय हम सोशल मीडिया पर बिता देते हैं।
0: बिल्कुल।
1: इसीलिए श्रोता साथियों जरूरी काम करते समय अनावश्यक नोटिफिकेशन बंद कर दें, मोबाइल को थोड़ी दूरी पर रख सकते हैं और सोशल मीडिया के लिए अलग समय निर्धारित कर सकते हैं।
0: जी हाँ।
1: इसका मतलब ये नहीं है कि मनोरंजन या मोबाइल का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें, बल्कि जरूरत है संतुलन बनाने की। इसलिए याद रखिए जिस चीज को हम नियंत्रित नहीं करेंगे वो धीरे धीरे हमारे समय को नियंत्रित करने लगेगी।
0: बिल्कुल जागृति जी। ऐसे में साथियों दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा आप तैयार करें। जैसे कि दिन खत्म होने पर केवल ये मत सोचिए कि आज कितना काम नहीं हो पाया।
1: बिल्कुल।
0: बल्कि ये भी देखिए कि आज आपने हासिल क्या किया है। खुद से तीन सवाल आप पूछे, जैसे कि आज मैंने कौन सा महत्वपूर्ण काम पूरा किया, मेरा समय कहाँ सबसे ज्यादा बर्बाद हुआ और कल मैं अपने काम को और कैसे बेहतर कर सकता हूँ या कर सकती हूँ।
1: जी हाँ
0: जागृति जी, ये छोटी सी समीक्षा हमारी अपनी गलतियों को समझने और अगले दिन को बेहतर बनाने में हमारी मदद करेगी।
1: बिल्कुल।
0: कभी कभी साथियों बेहतर काम करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं बल्कि बेहतर तरीके अपनाने की जरूरत होती है।
1: बिल्कुल कशिश, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं, हम जान पा रहे हैं कि किस तरह से हम अगर कम समय है तो बेहतर काम किस तरह से कर सकते हैं।
0: बिल्कुल।
1: और बेहतर काम करने के लिए हमें कौन कौन सी रणनीतियों को अपनाना होगा। तो ये रणनीतियों के बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, ये बातें निरंतर आगे भी जारी रहेंगी, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: जी हाँ जागृति जी,

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम युवाओं की आवाज में, और हम बात कर रहे थे कि अगर कम समय है तो हमें बेहतर काम किस तरह से करना है। गीत से पहले हमने काम की प्राथमिकता हमें तय करनी, इसको लेकर बातचीत की थी। साथ ही हमने जाना था कि एक समय में हमें एक ही काम करना है, काम को छोटे हिस्सों में बांट देना है, ध्यान भटकाने वाली चीजों से हमें दूरी बनाए रखनी है, साथ में दिन के अंत में काम करने की समीक्षा करनी है।
1: बिल्कुल,
0: तो ये बातें तो हमने गीत से पहले कर ली थी। श्रोता साथियों, अब आपको कहना चाहेंगे कि कम समय में बेहतर काम करने का मतलब ये नहीं है कि हम लगातार काम करते रहें और आराम के लिए समय ही ना निकालें। आराम, नींद, भोजन और मानसिक ताजगी भी हमारी कार्य क्षमता का हिस्सा है।
1: बिल्कुल।
0: अपने दिन को इस तरह व्यवस्थित करें कि काम के साथ साथ सीखने, परिवार, दोस्त, रुचियां और खुद के लिए भी समय रहे, क्योंकि सफलता केवल ज्यादा काम करने से नहीं मिलती बल्कि सही दिशा में सही तरीके से काम करने से मिलती है।
1: बिल्कुल जागृति जी, तो इस तरीके से दोस्तों ऐसे कुछ 5 रणनीतियां हैं जिन्हें हमें अपनाना चाहिए। जैसा कि हमने बताया कि पहली होती है प्राथमिकता तय करने की, दूसरा एक समय में एक काम करने की, तीसरी बड़े काम को छोटे हिस्सों में बांटने की, और चौथी ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करने की, और पांचवी श्रोता साथियों दिन के अंत में अपने काम की समीक्षा करने की।
0: जी हाँ,
1: ऐसे में युवा साथियों याद रखिए कि समय कम या ज्यादा नहीं होता, फर्क सिर्फ इतना है कि हम उसका इस्तेमाल कैसे करते हैं।
0: बिल्कुल,
1: आज से आप अपने काम करने का तरीका थोड़ा बदल लीजिए, छोटे बदलाव अपनाइए, कुछ ही समय में आपको अपने काम में श्रोता साथियों फर्क दिखाई देने लगेगा।
0: जी हाँ, बिल्कुल कशिश, इसी के साथ हमारी श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि मान लीजिए श्रोता साथियों कि दो युवाओं को एक ही काम पूरा करना है। कशिश, पहला युवा बिना योजना के काम शुरू करता है, बीच बीच में मोबाइल दिखता है, दूसरे काम को शुरू करता है, फिर पहले काम पर लौटता है, फिर पहले काम पर लौटता है और कहीं पर अपना काम दोहराता है।
1: बिल्कुल,
0: इसी तरह जो दूसरा युवा है वो पहले कुछ मिनट लगाकर योजना बनाता है, जरूरी काम को प्राथमिकता देता है, मोबाइल को एक तरफ रखता है, काम को छोटे हिस्सों में बांटता है और अंत में अपने काम की समीक्षा करता है। संभव है कि दोनों ने समान मेहनत की है लेकिन दूसरे युवा का समय ज्यादा व्यवस्थित तरीके से इस्तेमाल हुआ।
1: बिल्कुल,
0: इससे हमें यही शिक्षा मिलती है श्रोता साथियों कि सिर्फ ज्यादा मेहनत करना ही सफलता की कुंजी नहीं है, बल्कि सही दिशा में व्यवस्थित मेहनत करना भी उतना ही जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, श्रोता साथियों याद रखिए कि समय को बढ़ाया नहीं जा सकता, लेकिन समय के इस्तेमाल को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है।
0: बिल्कुल,
1: आपके पास भी वही 24 घंटे हैं जो दुनिया के हर व्यक्ति के पास हैं। फर्क इस बात से पैदा होता है जागृति जी कि उन घंटों में हम अपनी ऊर्जा, ध्यान और मेहनत को किस दिशा में लगाते हैं।
0: जी हाँ,
1: इसलिए दोस्तों आज से एक छोटा सा संकल्प आप लीजिए, काम ज्यादा करने का नहीं, काम बेहतर तरीके से करने का है, क्योंकि जब लक्ष्य स्पष्ट होते हैं, प्राथमिकता तय होती है और काम करने का तरीका व्यवस्थित हो जाता है तो कम समय में भी बेहतर परिणाम हासिल किए जा सकते हैं।
0: जी हाँ कशिश, आज की इस बातों का सार यही है कि समय कम नहीं है, जरूरत है उसे सही दिशा देने की। जब हम अपनी प्राथमिकता तय करते हैं, एकाग्र होकर काम करते हैं, बड़े काम को छोटे कदमों में बांटते हैं, ध्यान भटकाने वाली चीजों को नियंत्रित करते हैं और हर दिन अपने काम की समीक्षा करते हैं तो हमारी कार्य क्षमता धीरे धीरे बेहतर होने लगती है।
1: बिल्कुल,
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि सफलता इस बात से तय नहीं होती कि हमारे पास कितना समय है, बल्कि इस बात से तय होती है कि उपलब्ध समय का हमने कितना सार्थक उपयोग किया है।
1: जी हाँ,
0: इसीलिए आज से एक छोटा सा आप संकल्प लीजिए, काम को टालेंगे नहीं, सही काम को प्राथमिकता देंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे, एकाग्रता से काम करेंगे, बड़े लक्ष्य से डरेंगे नहीं, छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि हर दिन हमारे हाथ में एक नया अवसर लेकर आता है। बीता हुआ समय छोटा साथियों हम सभी जानते हैं कि वो वापस नहीं आता, लेकिन आने वाले समय को बेहतर जरूर बनाया जा सकता है, ये हमारे हाथ में ही होता है।
1: जी हाँ,
0: इसलिए अपने समय की कीमत समझिए, अपनी मेहनत को सही दिशा दीजिए और हर दिन खुद का थोड़ा बेहतर रूप बनने की कोशिश कीजिए।
1: बिल्कुल,
0: आपको कहना चाहेंगे श्रोता साथियों कि समय को रोकना हमारे हाथ में नहीं, लेकिन समय को सही दिशा देना हमारे हाथ में है। छोटे कदमों से शुरुआत कीजिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि बेहतर समय प्रबंधन ही बेहतर जीवन की शुरुआत है।
1: बिल्कुल जागृति जी, कहा जा सकता है कि हमारा आज का एक व्यवस्थित घंटा साथियों कल की कई उलझनों को आसान बना सकता है।
0: बिल्कुल,
1: इसलिए समय को सिर्फ गुजरने मत दीजिए, उसे अपने सपनों की दिशा में लगाइए। याद रखिए दोस्तों, समय कम नहीं होता, हमारी दिशा कहीं ना कहीं कई बार बिखर जाती है।
0: जी हाँ,
1: जब लक्ष्य स्पष्ट हो, प्राथमिकताएं तय हो और मेहनत सही जगह लगाई जाए जागृति जी, तो कुछ घंटे भी बहुत कुछ बदल सकते हैं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि कशिश आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने बहुत सारी बातें की, अब देख पा रहे हैं कि समय उचला है आज के इस कार्यक्रम से जाने का।
1: जी हाँ,
0: जाने से पहले सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल जागृति जी,

0: साथ ही इस गीत के साथ ही विदा लेते हैं और उम्मीद करते हैं कि आज जो भी बातें रही युवाओं की आवाज में वो आपको जरूर पसंद आई होंगी। आपको हमारा आज की कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए आप अपने राय सुझाव हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: तो श्रोता साथियों लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम युवाओं की आवाज वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागदरा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001 और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप अपनी प्रतिक्रिया हमें हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर से मुलाकात होगी हमारी आपसे इसी कार्यक्रम में इसी समय एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए आज के इस कार्यक्रम से जाने की अनुमति आपके अपनी दोस्त कशिश पाराशर को
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को।
1: नमस्कार।

0: सेहत नु राज हूँ है बोन। असल आदत ने सही खुराक है बोन। जिम की पर बात नी शुरुआत पानी तक ही करो। थोड़ू सी व्यायाम ने तात्काली नी जीवन जीवा। फल सब्जी रोजे खा बीमारी ने दूर भगावा। जंक फूड तक ही दूर रह नींदर पूरी ला ने खुश रह। होवे सेहत है असली धन आपरू। आज जीवन नो सहारो है। आज थकी आराज ने अपना वंगा ने जीवन में स्वस्थ बनावंगा। होवे स्वस्थ रो खुश रो क्योंकि आज है सेहत नु असली राज। वागर रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
1: यार सच बताऊं अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7,000 रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
2: हमरो घनी बोने पूछे हैं जमीन माते नाम हिरते आवे, कागज केने करने बनावो पड़े, सरकारी विभाग में जा या पसे गांव में स्वाद थई जाए।
0: तो हमरो बोनू अरे सब समस्या नो समाधान आपरे कने से है। ग्राम सभा तक की बात शुरू थाए है, पटवारी सचिव ने पंचायत आय तक की हर प्रक्रिया जुड़े है। एकलस ने हमरा ने हाथे मली ने जावो है। फार्म भरो जानकारी लो, जमीन माते नाम लकड़वो काटो नती, जैवरे अधिकार हंग्र अपना भी जानकारी सबनु हाथ में अधिकार, आस है समाधान में राह।
2: होवे भाइयों ने बहनों, हक जानो हक मांगो, जमीन कागज माते अपनु नाम लकाड़ो।
0: वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागर रेडियो 90.8 FM पर।

अपनी साथी मनीषा पटेल आपसे भी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वागड़ रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों आप सभी जानते हैं कि कार्यक्रम सच्चा बचपन में हम जब भी हाजिर होते हैं तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारा आपसे बातचीत का एक नया विषय होता है। तो आज भी श्रोता साथियों हमारा विषय ही बच्चों में स्वस्थ दोस्ती की पहचान कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, दोस्ती बचपन के सबसे खूबसूरत यादों में से एक होती है। स्कूल का सफर, खेल का मैदान, हंसी मजाक, छोटी छोटी शरारतें और मुश्किल समय में एक दूसरे का साथ, ये सब श्रोता साथियों दोस्ती को खास बनाते हैं। लेकिन श्रोता साथियों हर साथ निभाने वाला व्यक्ति सच्चा दोस्त हो ये जरूरी नहीं। कई बार साथियों बच्चे केवल समूह में शामिल होने के लिए गलत संगति का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ दोस्त उनका हौसला बढ़ाते हैं जबकि कुछ उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में श्रोता साथियों बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है कि सच्ची दोस्ती और स्वस्थ दोस्ती की पहचान क्या होती है। श्रोता साथियों दोस्ती वह है जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, सहयोग हो, ईमानदारी हो, एक दूसरे की प्रगति को देखकर खुशी महसूस की जाए। जी हाँ श्रोता साथियों सच्चा दोस्त वही होता है जो हमारी अच्छाइयों को बढ़ाए और गलतियों को प्यार से सुधारने की कोशिश करे। तो श्रोता साथियों इस विषय को लेकर हमारे आपसे कार्यक्रम के माध्यम से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन हमारे कार्यक्रम का दस्तूर ही शुरुआत में गीत संगीत सुनाना। तो उसी दस्तूर को निभाते हुए आइए श्रोता साथियों सुनते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में।

0: दोस्तों, इस प्यारे से गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ कार्यक्रम सच्चा बचपन में। जैसा कि श्रोता साथियों, गीत से पहले विषय तो बता ही चुकी हूँ और बातचीत की शुरुआत भी हो चुकी थी कि आज हम बात करने वाले हैं बच्चों में स्वस्थ दोस्ती की पहचान कैसे विकसित करें। जी हाँ श्रोता साथियों, कार्यक्रम के माध्यम से मैंने आपसे कहा था कि कई बार बच्चे केवल समूह में शामिल होने के लिए गलत संगति का हिस्सा बन जाते हैं। कुछ दोस्त उनका हौसला बढ़ाते हैं, जबकि कुछ दोस्त उन्हें गलत दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों को यह समझना बहुत जरूरी है साथियों कि सच्ची दोस्ती और स्वस्थ दोस्ती की पहचान क्या होती है। स्वस्थ दोस्ती श्रोता साथियों वह होती है जहाँ सम्मान हो, विश्वास हो, सहयोग हो, ईमानदारी हो और एक दूसरे की प्रगति देखकर खुशी महसूस हो। सच्चा दोस्त वही होता है साथियों जो हमारी इच्छाओं को बढ़ाए और गलतियों को प्यार से सुधारने की कोशिश करे। तो श्रोता साथियों, आइए सुनते हैं इस विषय पर आधारित एक प्यारा सा नाटक।
1: रिद्धिमा, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ?
2: हाँ क्यों नहीं, क्या हुआ, क्या बात है?
1: अरे कभी कभी मुझे समझ ही नहीं आता कि कौन मेरा सच्चा दोस्त है और कौन सिर्फ दिखावे का दोस्त है।
2: अचानक से तुम ऐसा क्यों सोच रही हो?
1: अरे क्या बताऊँ रिद्धिमा, कल मेरी कक्षा की कुछ लड़कियाँ मेरे सामने तो बहुत प्यार से बात कर रही थी, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि वे मेरी अनुपस्थिति में मेरा मजाक उड़ा रही थी। सच कहूँ तो मुझे बहुत बुरा लगा।
2: अच्छा, बुरा लगना तो स्वाभाविक है कृतिका, लेकिन शायद इसी घटना ने तुम्हें एक महत्वपूर्ण बात सिखा दी।
1: कौन सी बात?
2: सच्चा दोस्त वह नहीं होता जो केवल हमारे सामने मीठी बातें करे, बल्कि सच्चा दोस्त तो वह होता है जो तुम्हारा सम्मान तुम्हारी मौजूदगी में भी करे और तुम्हारी अनुपस्थिति में भी।
1: यह बात तो सही है, लेकिन क्या सच्चे दोस्ती की और कोई पहचान होती है क्या?
2: बहुत सारी होती है। सबसे पहली पहचान तो है विश्वास। अगर तुम किसी दोस्त को अपनी बात बताती हो और वह उसे दूसरों के सामने फैलाता नहीं है या किसी से शेयर नहीं करता है, तो वह तुम्हारे विश्वास की कद्र करता है।
1: हाँ, लेकिन अगर विश्वास टूट जाए तो दोस्ती भी तो कमजोर हो जाती है ना रिद्धिमा।
2: बिल्कुल। और दूसरी पहचान है प्रोत्साहन की, यानी कि सच्चा दोस्त तुम्हारी सफलता से जलता नहीं है बल्कि खुश होता है।
1: मुझे याद है जब मुझे चित्रकला प्रतियोगिता में पुरस्कार मिला था तो तुम सबसे ज्यादा खुश हुई थी।
2: हाँ, क्योंकि दोस्त की सफलता अपनी खुशी जैसी लगनी चाहिए। अगर दोस्त की उपलब्धि देखकर मन में ईर्ष्या आने लगे तो वह स्वस्थ दोस्ती नहीं कहलाती, पता है तुम्हें?
1: पता है, लेकिन तीसरी पहचान क्या है रिद्धिमा?
2: तीसरी पहचान है सही सलाह देना। मान लो कि कोई दोस्त तुम्हें होमवर्क छोड़कर घूमने के लिए कहे या किसी का मजाक उड़ाने के लिए उकसाए, तो क्या वह अच्छा दोस्त कहलाएगा?
1: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: हाँ, सच्चा दोस्त गलत काम में साथ नहीं देता कृतिका, वह जरूरत पड़ने पर नहीं कहने के साहस भी रखता है।
1: मतलब जो हमें गलत रास्ते पर जाने से रोके वही सच्चा मित्र है।
2: बिल्कुल। और एक और बात, सच्ची दोस्ती में तुलना भी नहीं होती है। हर बच्चे की अपनी विशेषता होती है। अगर दोस्त हमेशा तुलना करे और तुम्हें छोटा महसूस कराए तो वह दोस्ती स्वस्थ नहीं है।
1: अब मुझे समझ आ रहा है कि दोस्ती केवल साथ बैठने या बातें करने का नाम नहीं है।
2: हाँ, दोस्ती का मतलब है एक दूसरे को बेहतर इंसान बनने में मदद करना।
1: जानती हो रिद्धिमा, कभी कभी कुछ बच्चे केवल इसलिए गलत काम कर लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त ऐसा कर रहे होते हैं।
2: हाँ, यही वजह है कि सही दोस्त चुनना बहुत जरूरी है। हम जिन लोगों के साथ समय बिताते हैं ना, उनका असर हमारे विचारों और आदतों पर पड़ता है।
1: तो स्वस्थ दोस्ती हमें आगे बढ़ाती है और गलत दोस्ती हमें पीछे ले जा सकती है रिद्धिमा, इसका सीधा सा मतलब यही हुआ ना?
2: बिल्कुल, तुम सही समझ गई। अच्छे दोस्त हमें आत्मविश्वास देते हैं, हमारी बात सुनते हैं, मुश्किल समय में हमारे साथ खड़े रहते हैं और हमारी खुशियों में दिल से शामिल होते हैं।
1: रिद्धिमा, आज मुझे अपनी उलझन का जवाब मिल गया। अब मैं दोस्ती केवल हंसी मजाक देखकर नहीं करूंगी, मैं ये भी देखूंगी कि सामने वाला मेरे प्रति कितना ईमानदार, सहयोगी और सम्मानजनक है।
2: हाँ कृतिका, यही समझदारी होगी, क्योंकि सच्चे दोस्त जीवन में कम मिलते हैं, लेकिन जब मिलते हैं ना तो जीवन को बहुत सुंदर बना देते हैं।
1: और मुझे खुशी है कि मुझे एक सच्चे दोस्त मिल चुकी है।
2: और मुझे भी।
0: तो श्रोता साथियों, आज के नाटक में हमें यह समझने का अवसर मिला कि स्वस्थ दोस्ती केवल साथ समय बिताने का नाम नहीं है। सच्ची दोस्ती विश्वास, सम्मान, सहयोग और सकारात्मक सोच की नींव पर खड़ी होती है। बच्चों को यह सीखना जरूरी है श्रोता साथियों कि वे ऐसे दोस्तों का चुनाव करें जो उनकी इच्छाओं को बढ़ावा दे, उनकी भावनाओं का सम्मान करें और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। जो दोस्त हमारी सफलताओं में खुश हो, हमारी कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे और गलत कामों से दूर रहने की सलाह दे, वही सच्चा मित्र कहलाने योग्य है। जी हाँ साथियों, कहना चाहूंगी कि माता पिता और शिक्षक भी बच्चों को स्वस्थ दोस्ती का महत्व समझाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बच्चों से खुलकर बात करें, उनके मित्रों के बारे में जानें और उन्हें यह समझाएं कि अच्छे मित्र जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं। याद रखिए श्रोता साथियों, सच्चा दोस्त वह नहीं जो हर बात में हाँ कहे, सच्चा दोस्त वह है जो सही बात पर साथ दे, जो सफलता में खुश हो, कठिनाइयों में सहारा बने और जीवन के राह को बेहतर बनाने में मदद करे। इसी प्यारे से संदेश के साथ श्रोता साथियों, आज के इस कार्यक्रम से विदा लेना चाहूंगी। विदा तो मैं जरूर लूंगी, लेकिन जाने से पहले मनोरंजन करते हैं कार्यक्रम के एक और गीत के साथ में। आप सभी बने रहिएगा कार्यक्रम सच्चा बचपन में वागड़ रेडियो 90.8 FM पर।

श्रोता साथियों, इसी गीत के साथ हमारा आज का कार्यक्रम सच्चा बचपन अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ कि आज के कार्यक्रम में हमारी आपसे जो भी बातें रहीं, गीत संगीत रहे, जो नाटक रहा, वो आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुँचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखिए, हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा बचपन, वाग रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधारा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643। इसी के साथ दोस्तों, आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमारी ईमेल आईडी पर भी दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आज के इस कार्यक्रम से जाने की, आपकी अपनी साथी मनीषा पटेल को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार। साथी श्रोता साथियों, आप सभी को छोड़े चलती हूँ कार्यक्रम के अंतिम गीत के साथ में।

भाई ने बोनो घर तक निकलते वक्त कोई आपरो इंतजार करी रू है। माँ ने दुआ, पिता ने उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो क्योंकि घेरे कोई आपरो इंतजार करी रू है। वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित। आपे कारे विचार करियो है कि जैया पेड़ नी छाव में आपड़े रह हां या आपड़े नी कितली शांति मिले है। जीनी हवा में आपड़े हाल हां ई भी आपड़ा थकी कई आश राखे है। होवे अगर पेड़ ने रहेगा तो आपड़े हरते जीवंगा। प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़े धरती ने जीवन दान आलंगा। होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो। होवे आज नाना कदम है ये अबावारा काल ने बदलाव ने शुरुआत है। वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: जैसे वहां से खाद बन के तैयार होता है और वहां खेतों के अंदर आता है।
1: बिल्कुल।
0: तो ये जो पशुओं का गोबर है वो उर्वरक बनाता है। जंगल घटने से प्राकृतिक चक्र धीरे धीरे कमजोर हो जाता है।
1: जी हाँ।
0: तो प्रकृति को बचाए रखना जरूरी है। प्राकृतिक बचेगी तो अपनी संस्कृति बचेगी। तो ये सब चीज जैसे मैंने बताया थी, हर चीज को जुड़ती कड़ी है। यदि ये कड़ी कहीं ना कहीं खत्म हो गई तो आदिवासी का जीवन संकट में कहीं ना कहीं समस्या आ जाती है।
1: बिल्कुल सर, आपने सही कहा। यही बात आती है कि इन सारी चीजों का हमारे समुदाय स्तर पर समाधान कैसे देखा जा सकता है।
0: समुदाय के लेवल पर जो अपन समाधान की बात करें तो समुदाय को ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण करना चाहिए। जंगल को काटना नहीं चाहिए। जंगल में क्या काटने की जरूरत है? जंगल में जो सूखी टहनी है, यदि जलाऊ लकड़ी काटते हो तो सूखी टहनी है, ये चीज काटनी चाहिए। यदि आप कुवाड़ा लेके पूरे पेड़ पौधे को काट दोगे तो जंगल खत्म हो जाएगा, और जंगल खत्म हो जाएगा तो बारिश, आप जानते हो, कहीं ना कहीं वैज्ञानिक भी वही कह रहे हैं कि जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ बारिश है, जहाँ पेड़ पौधे हैं वहाँ पानी संग्रह हो सकता है। तो पेड़ पौधे बचा के रखना बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल।
0: पेड़ पौधों के साथ साथ जो अपने समुदाय है उसको, ये जो अपन बात करते हैं ना कि भी रासायनिक की बात करते हैं, पेस्टिसाइड की बात करते हैं, इस तरह का प्रयोग बहुत कम करना चाहिए।
1: जी जी।
0: और इस तरह का प्रयोग करने से अपने जलवायु पर असर होती है, तो इसका भी अपन को ध्यान रखना चाहिए कि जितना कम प्रयोग करेंगे इतनी प्रकृति जो अपना है वो सही रहेगी, और प्रकृति सही रहेगी तो बारिश अच्छी आएगी, और बारिश अच्छी आएगी तो जंगल हरा भरा रहेगा, और जंगल हरा भरा रहेगा तो किसान की खुशहाली बनी रहेगी।
1: बिल्कुल सर, जैसा कि आपने हमें कार्यक्रम में बहुत अच्छी तरीके से ये बताया है कि विरासत क्या है, इसका क्या महत्व है, और किस तरीके से जंगल और नदी का रिश्ता है, और इनका हमारी खेती और संस्कृति पर क्या असर पड़ता है, और समुदाय साथी क्या क्या समाधान के तौर पर चीजों को अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो अंत में आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे श्रोता साथियों को?
0: मैं श्रोता साथियों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो जंगल बचाने की अपन बात कर रहे हैं, जो समय पर बारिश की आवश्यकता यदि लानी है और फसल को अच्छी तरह से अपन को लेना है, फसल वापस पहले जैसा ही समय लाना है, तो अपन को जरूर हर बारिश के मौसम पे अभी हर समुदाय यदि 5-5 पौधे लगाएंगे तो काफी पौधों की संख्या हो जाएगी, और जहाँ पौधे हैं वहाँ पानी है, पानी को बचा के रखना बहुत जरूरी है। पानी बचेगा तो जीवन सुधरेगा, फसल बचेगी। तो ये चीज करेंगे तो श्रोता साथियों से मैं आग्रह करूंगा कि अभी हर व्यक्ति पौधे लगाने का प्रयास करे, और पौधे बचाने का प्रयास करे, काटने का नहीं, बचाने का प्रयास करे, तभी जीवन सुखदायी बनेगा।
1: जी बिल्कुल सर, तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े और आपका कीमती समय आपने हमें दिया।
0: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
1: વાઇન બુનો સિમકે વડે આપણે વેસમે પાંચા ભાઈ પટેલ સાહેબ જોડે તક હતા, ને એણે આપણને ઘણી અસલ તરીકા તે કી ઘણા કની વાતે વતાડી હે, એણે આપણને વતાડ્યું હે કે વિરાસત હું કહેવાય આનું હું મહત્વ હે, ને હરતે જંગલ ની નદી નું એકા બીજા તક કી રિશ્તો હે, ને એને સાથે આ જે જંગલ ની નદીએ હે ઈ અગર ને હોંગા તો આનું અસર આપણે જીવન ખેતી ને સંસ્કૃતિ માતે હરતે પડે હે, ને સમુદાય અન મે હરતે સમાધાન ની તોર માતે ઘણા કની મોટી ભૂમિકા નિભાવી શકે। तो आशा करा हो कि आ हंगरी वाते आपने गमी होंगा, क्योंकि अभी टाइम थी गयो है आपने अनस कार्यक्रम तक की सूटा पड़वानो। तो सूटा तो पड़ा, पर जाते पहले हम रिलैक्स और कितने मोरे पड़ा सूटा।

वाइनबुनु अणस के थाते कार्यक्रम खेती वाड़ी तक अमे पड़ा सूट। आशा कर हूँ कि ऐसे कार्यक्रम में अमारी आप तक जी भी बातें रही है आपने गम्मी होंगा। तो आपने अमरु आज ना कार्यक्रम केव लगे एने बारा में आप अपना राय सुझाव अमने आली सको अमरे अण पता माते। अमरु पतु है कार्यक्रम खेती वाड़ी वागड़ रेडियो 90.8 FM मुकाम पोस्ट कुपड़ा वागधारा कैंपस बांसवाड़ा राजस्थान। हमारो पिन कोड नंबर है 327001। हजी वधारे जानकारी बल्ले आप अमने फोन करी शको अमारे अणा फोन नंबर माते। अमारो फोन नंबर है 9460051234। तो भाई बोनू फेरी मलंगा अणस कार्यक्रम में अणस टेम माते एक ना विषय ने हाते तारुती राम राम राम राम।

0: जागृति बुन आपे कारे सोचू है अगर आप बूंदे रुकी जाएंगा तो हूँ था
1: नाना अंजलि बुन हूँ था का
0: अरे जागृति बुन आपड़ी जे नदिये है ये हुकी जाएंगा खेतर बंजर थे ही जाएंगा ने आपड़ो जीवन जे है ये भी रुकी जागा
1: ओ अंजलि बुन इटलेस मन का कहे कि पानी तो काल है पानी थकीस आपड़ो जीवन है
0: होवे जागृति बुन हर बूंद में आपड़ो जीवन है ने आज धरती माता नु संबल है
1: होवे अंजलि बुन आपड़े भाई बहन थकी आपड़े अनुरोध करा कि नर ने खुल्लो नी राखो बारिश ने पानी नु संग्रह करवो आज नानी नानी आदत बदलंगा तो आपड़ो ने आपड़ी अब्बा वाली पीढ़ी नु जीवन सफल थी सागा
0: होवे होवे जागृति बुन आपड़े भाई बहनों ने कहो कि पानी बचाओ पानी बचाओ ने आपड़ी धरती ने हरी भरी राखो जल जीवन है आ आपड़ी पहचान है हर बूंद नु मोल आपड़े जानो
2: वाग रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित
3: भाइयों बोनो जैवरे ग्राम सभा में बोने बोले हैं तो फैसला मजबूत थे हैं वन अधिकार सिर्फ कानून नती माँ जंगल थकी जुड़ियो बोनो नो रिश्तो है जे जंगल में हमसे हैं ई इन्होंने रक्षा करे हैं तो आवो बोना नी भागीदारी बढ़ावा ग्राम सभा मजबूत बनावा ने जंगल अनु भविष्य सुरक्षित करा बोना नी आवाज विकास नी असली पहचान है
4: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: हो लेकिन लक्ष्य एक हो तो असंभव लगने वाला काम भी आसान हो जाता है। यही मिलकर काम करने की संस्कृति की असली ताकत है।
1: बिल्कुल। तो जागृति जी, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से इस विषय पर ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत में क्यों ना हम हमारे श्रोता साथियों को एक प्यारे से गीत के साथ में मनोरंजन करवा दें।
0: बिल्कुल। तो आइए साथियों सुन लेते हैं कार्यक्रम का यह गीत। आप बने रहें कार्यक्रम सच्चा स्वराज में।

0: साथियों, इस गीत के बाद फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले विषय से अवगत भी करवाया था और हमारी बातचीत भी रही थी कि आज हम बात करने वाले हैं मिलकर काम करने की संस्कृति को हम कैसे विकसित करें।
1: बिल्कुल,
0: जैसे कि अंजलि, किसी भी समाज, संस्था, गांव या देश की वास्तविक ताकत उसके संसाधनों से ज्यादा उसके लोगों की एकजुटता में होती है। जब अलग अलग सोच रखने वाले लोग एक साझा उद्देश्य के लिए साथ आते हैं, एक दूसरे की बातें सुनते हैं और अपनी जिम्मेदारी

0: बिल्कुल ईमानदारी से निभाते हैं तब बड़े से बड़ा परिवर्तन संभव हो जाता है।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सच्चे स्वराज का अर्थ केवल शासन व्यवस्था में स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: सच्चा स्वराज वह स्थिति है जहां व्यक्ति अपने जीवन, समाज और समुदाय से जुड़े निर्णयों में जागरूक होकर अपनी भूमिका निभाता है, जहां लोग केवल सरकार या किसी संस्था से समाधान की उम्मीद नहीं करते बल्कि स्वयं आगे बढ़कर समस्याओं का समाधान खोजते हैं।
0: बिल्कुल,
1: इस दृष्टि से मिलकर काम करने की संस्कृति सच्चे स्वराज की आधारशिला है।
0: बिल्कुल अंजलि, हम कह सकते हैं कि हमारे गांव और समुदायों में ऐसी अनेक समस्याएं हैं जिनका समाधान किसी एक व्यक्ति के प्रयास से संभव नहीं है। पानी बचाना हो, गांव को स्वच्छ रखना हो, बच्चों की शिक्षा को मजबूत करना हो, प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा करनी हो या पलायन को रोकना हो,
1: बिल्कुल
0: हर जगह सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। इसीलिए आज जरूरत केवल ये पूछने की नहीं है कि कौन करेगा, बल्कि ये पूछने की है कि हम मिलकर क्या कर सकते हैं। श्रोताओं, में से हम की ओर बढ़ना बहुत जरूरी है। मिलकर काम करने की संस्कृति की पहली सीढ़ी सोच में बदलाव है। जब व्यक्ति हर समस्या को केवल अपने दृष्टिकोण से देखने लगता है अंजलि, तो सहयोग की भावना कमजोर होती है।
1: जी जी।
0: और इसके विपरीत जब हम ये समझते हैं कि हमारी खुशहाली दूसरों की खुशहाली से जुड़ी है, तब सामूहिकता की भावना जन्म लेती है।
1: बिल्कुल,
0: मैंने किया की जगह हमने किया का भाव किसी भी समूह को मजबूत बनाता है। एक किसान अकेले अपने खेत की चिंता कर सकता है, लेकिन पूरे गांव के जल स्रोतों को बचाने के लिए श्रोताओं पूरे समुदाय का साथ बहुत जरूरी है। एक शिक्षक अपने विद्यालय को बेहतर बना सकता है, लेकिन बच्चों के समग्र विकास के लिए अभिभावक, समुदाय और विद्यालय सभी का सहयोग बहुत जरूरी है।
1: बिल्कुल जागृति जी, इसलिए कह सकते हैं कि यही हम की भावना सच्चे स्वराज को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल,
1: इसी के साथ श्रोता साथियों, साझा लक्ष्य तय करना है, क्योंकि किसी भी सामूहिक प्रयास की सफलता के लिए सबसे पहले एक स्पष्ट साझा लक्ष्य होना चाहिए। यदि 10 लोग 10 अलग दिशाओं में चलेंगे जागृति जी, तो उनकी मेहनत बिखर जाएगी।
0: बिल्कुल,
1: लेकिन यदि सभी का उद्देश्य एक होगा तो छोटे छोटे प्रयास भी बड़ा परिणाम दे सकते हैं। गांव में यदि लक्ष्य है कि कोई बच्चा विद्यालय से बाहर न रहे, तो शिक्षक, अभिभावक, पंचायत और समुदाय को मिलकर जिम्मेदारी लेनी होगी। यदि लक्ष्य है कि गांव में पानी की एक एक बूंद बचाई जाए, तो जल संरक्षण को लेकर किसी एक परिवार या संस्था की जिम्मेदारी नहीं माना जा सकता। साझा लक्ष्य लोगों को जोड़ता है और उन्हें ये एहसास कराता है कि उनकी छोटी सी भूमिका भी महत्वपूर्ण है।
0: बिल्कुल अंजलि, एक दूसरे की बात को सुनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मिलकर काम करने का अर्थ केवल अपनी बात रखना नहीं होता, बल्कि दूसरों की बात को ध्यान से सुनना भी होता है। हर व्यक्ति के पास अपने अनुभव है, ज्ञान है और समस्याएं भी होती है। कई बार हम देखते हैं कि किसी समस्या का सबसे अच्छा समाधान उस व्यक्ति के पास होता है जो समस्या को प्रत्यक्ष रूप से झेल रहा होता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए समुदाय में ऐसा वातावरण होना चाहिए जहां हर व्यक्ति अपनी बात को सम्मान के साथ रख सके। अब महिला, किसान, युवा, बुजुर्ग, बच्चे और दिव्यांग सभी की आवाज को महत्व मिलना चाहिए। जब निर्णय लोगों पर थोपे नहीं जाते बल्कि उनके साथ मिलकर लिए जाते हैं, तो उनमें निर्णय के प्रति अपनापन और जिम्मेदारी दोनों बढ़ते हैं।
1: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि सामूहिक काम का मतलब यह नहीं है कि हर व्यक्ति हर काम करे, बल्कि इसका अर्थ है कि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार जिम्मेदारी निभाए। किसी को योजना बनाने में रुचि है, तो किसी को लोगों से संवाद करने में, तो कोई तकनीक का काम अच्छे तरीके से कर लेता है, तो कोई संसाधनों का बेहतर प्रबंधन कर सकता है। यदि श्रोता साथियों इन क्षमताओं को पहचान कर जिम्मेदारियां बांट दी जाए, तो काम आसान और प्रभावी हो जाता है। जिम्मेदारी बांटने के साथ साथ जागृति जी, जवाबदेही भी जरूरी है। जिस काम की जिम्मेदारी ली है उसे समय पर पूरा करने की आदत टीम के विश्वास को मजबूत करती है।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं कि मिलकर काम करने की संस्कृति हम हमारे अंदर किस तरह से विकसित कर सकते हैं, तो अंजलि बातें हम ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
1: बिल्कुल।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं कार्यक्रम सच्चा स्वराज में। जैसा कि गीत से पहले हमने जाना था कि मिलकर अगर हमें काम करना है तो उसके लिए हमें मैं से हम की ओर बढ़ना होगा,
1: बिल्कुल
0: सांझा लक्ष्य तय करना है, एक दूसरे की बात को सुनना है और जिम्मेदारियों का उचित बंटवारा करना है। इसी के साथ जागृति जी, अब बात आती है विश्वास और पारदर्शिता की। तो श्रोता साथियों, किसी भी टीम की सबसे बड़ी पूंजी विश्वास है।
1: बिल्कुल,
0: जहाँ लोगों को एक दूसरे पर भरोसा होता है वहाँ सहयोग स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। विश्वास केवल शब्दों से नहीं बनता बल्कि यह ईमानदार व्यवहार, पारदर्शी निर्णय और लगातार जिम्मेदारी निभाने से बनता है।
1: जी हाँ।
0: यदि किसी सामुदायिक कार्य में धन या संसाधनों का उपयोग हो रहा है तो उसकी जानकारी सभी संबंधित लोगों के सामने स्पष्ट होनी चाहिए। पारदर्शिता से गलतफहमियां कम होती है और लोगों का विश्वास बढ़ता है, और यही विश्वास जागृति जी सामूहिक प्रयासों को लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।
1: जी हाँ अंजलि, जहाँ अनेक लोग साथ काम करेंगे वहाँ विचारों में अंतर होना स्वाभाविक हो जाता है। दोस्तों, समस्या मतभेद नहीं बल्कि मतभेद को विवाद में बदल देती है। अलग विचारों को दबाने के बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी होगी। यदि किसी निर्णय पर आपकी असहमति है तो व्यक्ति को गलत साबित करने के बजाय विचार को समझने का प्रयास होना चाहिए। लोकतांत्रिक और स्वराज आधारित व्यवस्था में हर आवाज का सम्मान महत्वपूर्ण है। संवाद के माध्यम से समाधान खोजने की संस्कृति ही स्वस्थ सामूहिकता को जन्म देती है। हम देखते हैं अंजलि कि मिलकर काम करने की संस्कृति बड़े अभियानों से ही विकसित नहीं होती। इसकी शुरुआत रोजमर्रा के छोटे छोटे कामों से होती है।
0: बिल्कुल,
1: गांव में स्वच्छता अभियान हो, विद्यालय में बच्चों के लिए पुस्तकालय बनाने का प्रयास हो, पौधारोपण हो, पानी की टंकी की सफाई हो या किसी जरूरतमंद परिवार की सहायता हो, इन छोटे कार्यों में मिलकर भाग लेने से सामूहिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। जब लोग बार बार साथ काम करते हैं तो उनके बीच विश्वास और अपनापन बढ़ता है और धीरे धीरे यही छोटी पहल बड़े सामाजिक परिवर्तन का आधार बनती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, इसी के साथ बात आती है कि श्रेय से अधिक समाधान पर ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों कई बार सामूहिक काम में सबसे बड़ी बाधा यह होती है कि लोग यह सोचने लगते हैं कि सफलता का श्रेय किसे मिलेगा। ऐसी सोच टीम को कमजोर कर सकती है।
1: बिल्कुल,
0: सच्ची टीम भावना में प्रश्न यह नहीं होता कि नाम किसका होगा बल्कि यह होता है कि काम कैसे सफल होगा।
1: जी हाँ।
0: यदि गांव में जल संरक्षण का कार्य सफल होता है तो उसका श्रेय किसी एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे समुदाय को मिलना चाहिए, क्योंकि सामूहिक सफलता का सबसे बड़ा सम्मान यही है कि उसका लाभ सभी को मिले। क्योंकि हम देखते हैं कि हर सामूहिक प्रयास हमेशा सफल हो ये जरूरी नहीं।
1: जी हाँ।
0: कभी योजना में कमी रह जाती है, कभी संसाधनों की कमी हो सकती है, तो कभी परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती। ऐसे समय में श्रोता साथियों, एक दूसरे को दोष देने से समस्या हल नहीं होती। इसके बजाय ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ हुई है और अगली बार क्या बेहतर किया जा सकता है।
1: बिल्कुल,
0: असफलता को दोषारोपण का अवसर नहीं सीखने का अवसर बनाना चाहिए, और यही सोच जागृति जी टीम को लगातार आगे बढ़ाती है।
1: बिल्कुल अंजलि, मिलकर काम करने की संस्कृति में नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं होता। सच्चा नेतृत्व तो वो है जो लोगों को साथ लेकर चलता है, उनकी बात को सुनता है और जरूरत पड़ने पर स्वयं आगे बढ़कर उदाहरण प्रस्तुत करता है।
0: बिल्कुल,
1: हम देखते हैं अंजलि कि जो व्यक्ति दूसरों से समय देने की अपेक्षा करता है उसे स्वयं भी समय देना होगा। जो ईमानदारी की बात करता है उसे अपने व्यवहार में भी ईमानदारी दिखानी होगी। नेतृत्व तब प्रभावी होता है जब लोग नेता के आदेश से नहीं बल्कि उसके व्यवहार से प्रेरित होकर साथ आते हैं। इसी के साथ महिला और युवाओं की भागीदारी को लेकर हम बात करें तो सामूहिक विकास तब पूर्ण नहीं हो सकता जब तक समाज के सभी वर्गों की भागीदारी न हो। विशेष रूप से महिला और युवाओं की भूमिका भी बहुत जरूरी है। महिलाएं हमारी परिवार, कृषि, जल, पोषण, समुदाय से जुड़े अनेक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। इसीलिए श्रोताओं, उनके अनुभव और निर्णयों को सामूहिक योजनाओं में उचित स्थान मिलना चाहिए।
0: जी जी।
1: इसी प्रकार अगर युवाओं की बात करें तो युवा नई सोच, तकनीक और ऊर्जा लेकर आते हैं अंजलि। अगर युवाओं को केवल दर्शक न बनाकर परिवर्तन का भागीदारी बनाया जाए तो समुदाय में नई ऊर्जा पैदा हो सकती है।
0: बिल्कुल जागृति जी, क्योंकि मिलकर काम करने की संस्कृति बचपन से विकसित होती है। विद्यालय बच्चों को केवल किताबों का ज्ञान देने का स्थान नहीं बल्कि सामाजिक व्यवहार सिखाने का भी स्थान है।
1: बिल्कुल,
0: बच्चों को सामूहिक गतिविधियों, खेलों, स्वच्छता अभियानों, पौधारोपण और सामुदायिक कार्यों में शामिल किया जा सकता है। इससे हम देखते हैं कि उनमें नेतृत्व, सहयोग, जिम्मेदारी और दूसरों के प्रति सम्मान की भावना विकसित होती है। आज का सहयोगी बच्चा ही कल का जिम्मेदार नागरिक बनता है।
1: बिल्कुल
0: जागृति जी, कहना चाहेंगे श्रोता साथियों से कि सच्चे स्वराज का एक महत्वपूर्ण आधार है स्थानीय संसाधनों और स्थानीय ज्ञान पर भरोसा।
1: बिल्कुल,
0: हर गांव और समुदाय के पास अपनी समस्याओं से निपटने का पारंपरिक ज्ञान और अनुभव होता है। बुजुर्गों के अनुभव, किसानों का स्थानीय ज्ञान, महिलाओं का घरेलू और पोषण संबंधित अनुभव युवाओं की तकनीकी समझ और इन सब को जोड़कर बेहतर समाधान तैयार किया जा सकते हैं।
1: जी हाँ।
0: जब समुदाय अपनी ताकत पहचानता है तो वह हर छोटी समस्या के लिए बाहर से सहायता की प्रतीक्षा नहीं करता।
1: बिल्कुल अंजलि, क्योंकि ग्राम सभा, पंचायत, विद्यालय, स्वयं सहायता समूह, युवा समूह और अन्य सामुदायिक संस्थाएं मिलकर सहयोग की मजबूत व्यवस्था बना सकती है। इन संस्थाओं के बीच संवाद और समन्वय होना होगा। अगर सभी संस्थाएं अपने अपने स्तर पर काम कर रहे लेकिन एक दूसरे से जुड़ी ना हो तो प्रयास बिखर जाएंगे। श्रोताओं, साझा बैठक के स्पष्ट योजना और नियमित समीक्षा सामूहिक प्रयासों को मजबूत कर सकती है।
0: बिल्कुल,
1: आपको कहना चाहेंगे कि आज तकनीक लोगों को जोड़ने का एक प्रभावी माध्यम बन गई है। मोबाइल, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सामुदायिक संचार माध्यमों का उपयोग सूचना साझा करने, बैठक की जानकारी देने, अच्छे कार्यों को सामने लाने और लोगों की भागीदारी बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। लेकिन तकनीक का उद्देश्य केवल संदेश भेजना नहीं होता अंजलि, उसका उपयोग वास्तविक भागीदारी बढ़ाने के लिए होना चाहिए। डिजिटल संवाद के साथ जमीन पर वास्तविक सहयोग भी जरूरी है। श्रोताओं,
0: बिल्कुल जागृति जी, सच्चा स्वराज तभी मजबूत होगा जब नागरिक अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझे। केवल यह कहना कि सरकार हमारी समस्या हल करे स्वराज की पूरी भावना नहीं है। यदि सड़क पर कचरा है तो उसे साफ रखने की जिम्मेदारी हमारी भी है। यदि पानी कम है तो पानी बचाने की जिम्मेदारी भी श्रोता साथियों हमारी है। यदि कोई बच्चा शिक्षा से वंचित है तो उसके भविष्य की चिंता केवल किसी एक संस्था की नहीं पूरे समाज की होनी चाहिए। स्वराज का अर्थ अपने जीवन और अपने समाज से जुड़े मामलों में जागरूक होकर जिम्मेदारी निभाना है। इसके लिए साथ को आदत बनाना, यानी कि मिलकर काम करने की संस्कृति किसी एक दिन की बैठक से विकसित नहीं होती या लगातार किए गए छोटे छोटे प्रयासों से बनती है। जागृति जी,
1: बिल्कुल,
0: आज हम किसी की मदद करें, कल किसी की बात सुने, किसी दिन सामुदायिक समस्या पर चर्चा करें और किसी अवसर पर सामूहिक श्रमदान करें। इन प्रयासों से धीरे धीरे सहयोग हमारी आदत बन जाता है और जब सहयोग आदत बन जाता है तो समुदाय की समस्याओं का सामना करना आसान हो जाता है।
1: बिल्कुल अंजलि, तो जैसा कि आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बात कर रहे हैं मिलकर काम करने की संस्कृति को हम कैसे विकसित कर सकते हैं, तो छोटी मोटी बातें रह गई वो हम जरूर करेंगे, लेकिन अभी सुन लेते हैं एक और गीत।
0: बिल्कुल।

0: साथियों इस गीत के साथ विदा लेना चाहेंगे, पर अंत में आपसे यह कहना चाहेंगे कि मिलकर काम करने की संस्कृति केवल काम पूरा करने का तरीका नहीं है, बल्कि समाज को मजबूत बनाने की सोच है। इसमें विश्वास है, सम्मान है, जिम्मेदारी है और सबसे बढ़कर हम की भावना है।
1: बिल्कुल,
0: सच्चा स्वराज किसी एक व्यक्ति के हाथों से नहीं बल्कि करोड़ों जिम्मेदार हाथों से बनता है अंजलि। जब गाँव का किसान, शिक्षक, महिला, युवा, बच्चे, बुजुर्ग अपनी अपनी भूमिका को समझ कर एक साझा उद्देश्य के लिए आगे बढ़ते हैं, तब विकास केवल योजना नहीं रहता, वो जन भागीदारी का आंदोलन बन जाता है।
1: बिल्कुल,
0: इसलिए दोस्तों हमें तय करना होगा कि हम समस्याओं के लिए केवल किसी और की ओर देखने वाले नागरिक बनेंगे या समाधान का हिस्सा बनेंगे। हमें ये सोच विकसित करनी होगी कि मेरे गाँव की समस्या मेरी भी समस्या है, मेरे समुदाय की प्रगति मेरी भी प्रगति है। तो श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि आज से हम, मैं से हम, मेरा से हमारा और कौन करेगा से हम मिलकर करेंगे कि और कदम जरूर बढ़ाएं, क्योंकि जब हाथ मिलते हैं तो केवल काम पूरा नहीं होता, विश्वास बनता है। जब विचार मिलते हैं तो केवल योजना नहीं बनती, दिशा बनती है। और जब पूरा समुदाय मिलकर आगे बढ़ता है अंजलि, तब केवल विकास नहीं होता, सच्चा स्वराज मजबूत होता है।
1: बिल्कुल, तो कह सकते हैं श्रोता साथियों कि सच्चा स्वराज वही है जहां हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझे, हर आवाज सुनी जाए और हर कदम सामूहिक भलाई के लिए आगे बढ़े। इसलिए मिलकर काम करने की संस्कृति को अपनी आदत, अपनी पहचान और अपने सच्चे स्वराज की ताकत बनाएं।
0: बिल्कुल, तो जैसा कि बातें बहुत सारी हो चुकी है, समय का मान रखना होगा और विदा लेना होगा, पर जाने से पहले हमारे श्रोता साथियों को पता बताना चाहेंगे ताकि उनको हमारा आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा उसके लिए वो अपने राय से जो हम तक जरूर पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम सच्चा स्वराज, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643।
0: इसी के साथ साथियों आप हमारी ईमेल आईडी भी लिख लीजिए, हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर
0: और आपके अपने साथी जागृति भट्ट को
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य सुनने वाले सभी श्रोता साथियों को आपके अपने साथी मनीषा पटेल
1: और आपके अपने साथी अंजलि पारेश्वर का प्यार भरा
0: नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी सुन रहे हैं आपका अपना सामुदायिक रेडियो वाग रेडियो 90.8 FM और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लेकर हाजिर हो चुके हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य को लेकर अपने नियत समय पर एक नए विषय के साथ में। मनीषा, आज कार्यक्रम में हमारी श्रोता साथियों से बातचीत का विषय है दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व को लेकर।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, हम सभी जानते हैं कि क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बुजुर्ग रोज के भोजन में दाल को इतना महत्व क्यों देते हैं? क्यों हर थाली में रोटी सब्जी और दाल का विशेष स्थान होता है? इसका कारण यह है कि दालें केवल पेट भरने का साधन नहीं है बल्कि हमारे शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाने वाले अनेक पोषक तत्वों का खजाना है। दालें भारतीय भोजन का अभिन्न हिस्सा है मनीषा, क्योंकि अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, चना, राजमा, लोबिया जैसे जो दालें हैं वो न केवल स्वादिष्ट होती हैं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी होती हैं।
0: जी हाँ,
1: विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में दालें प्रोटीन का सबसे सस्ता और सुलभ स्रोत मानी जाती है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से इस विषय को लेकर हमारी श्रोता साथियों से ढेर सारी बातें रहेंगी, लेकिन शुरुआत में गीत संगीत सुनाना हमारे कार्यक्रम का दस्तूर है।
1: जी हाँ,
0: तो क्यों ना उसी दस्तूर को निभाते हुए श्रोता साथियों को कार्यक्रम का पहला गीत हम सुनवा दी।
1: बिल्कुल, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को। आप बने रहिएगा वाग रेडियो 90.8 FM पर।

0: दोस्तों, इस गीत के बाद आप सभी का फिर से स्वागत करते हैं कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य में। जैसा कि श्रोता साथियों गीत से पहले विषय से तो रूबरू कराई चुके हैं कि आज हम बात करने वाले हैं दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेकर।
1: बिल्कुल
0: अंजलि जी, हम देखते हैं कि भारतीय भोजन में दाल का विशेष स्थान है। घरों में रोज किसी न किसी रूप में दाल बनाई जाती है साथियों। कभी अरहर की दाल हो, मूंग की दाल, मसूर की दाल, उड़द की दाल, चने की दाल या फिर कोई अन्य दलहन, हर दाल अपने अंदर कहीं महत्वपूर्ण पोषक तत्वों को समेटे हुए होती है। साथियों, कहना चाहेंगे कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल पेट भरना पर्याप्त नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: शरीर को प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ, फाइबर और पर्याप्त पानी जैसे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता होती है। दालें इसमें से विशेष रूप से प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और कई खनिज पदार्थों का अच्छा स्रोत हो सकती हैं।
1: जी हाँ मनीषा, हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसमें प्रमुख रूप से, जैसा कि आपने भी बताया, कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज लवण और फाइबर चाहिए होता है। यदि इनमें से किसी एक की भी कमी रह जाती है तो शरीर की कार्य क्षमता प्रभावित हो सकती है।
0: बिल्कुल
1: श्रोता साथियों, सबसे पहले बात करते हैं प्रोटीन की। तो प्रोटीन शरीर की वृद्धि और टूट फूट की मरम्मत के लिए आवश्यक होता है। बच्चों के शारीरिक विकास, युवाओं की ताकत और बुजुर्गों के स्वास्थ्य के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। दालों में भरपूर मात्रा में प्रोटीन होता है। यही कारण है कि जिन्हें नियमित रूप से दूध, अंडा या मांस नहीं मिलता, उनके लिए दाल एक बेहतरीन विकल्प है।
0: बिल्कुल।
1: दूसरा महत्वपूर्ण तत्व है फाइबर, जो कि दालों में मौजूद रहता है और उसमें फाइबर पाचन तंत्र को स्वस्थ रखता है। यह कब्ज जैसी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है। इससे आवश्यक खाने की आदत भी कम हो जाती है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि दालों में आयरन भी बहुत अच्छी मात्रा में होता है। आयरन हमारे शरीर में खून बनाने का काम करता है। विशेष रूप से मनीषा, महिलाओं और किशोरियों और गर्भवती माताओं के लिए आयरन बहुत महत्वपूर्ण है। आयरन की कमी से एनीमिया यानी कि खून की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती है।
0: बिल्कुल अंजलि जी, यही अगर बात करें खनिज पदार्थों की तो श्रोता साथियों, हम देखते हैं कि दालों में कई प्रकार के खनिज पदार्थ पाए जाते हैं। इसमें प्रोटीन, मैग्नीशियम, जिंक और अन्य खनिज पदार्थ शामिल होते हैं। खनिज पदार्थ शरीर की विभिन्न सामान्य जैविक प्रक्रियाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए श्रोता साथियों, भोजन में अलग अलग प्रकार के पौष्टिक खाद्य पदार्थ शामिल करना भी जरूरी है। यहीं अगर बात करें कार्बोहाइड्रेट की तो अंजलि जी, हम देखते हैं कि दालों में कार्बोहाइड्रेट भी होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर के लिए ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। श्रोता साथियों, जब हम दाल को चावल या रोटी के साथ खाते हैं तो हमें एक ही भोजन में अलग अलग प्रकार के पोषक तत्व प्राप्त होते हैं।
1: बिल्कुल,
0: इसीलिए भारतीय भोजन में दाल चावल और दाल रोटी जैसी पारंपरिक जोड़ियां लंबे समय तक लोकप्रिय रही हैं।
1: बिल्कुल मनीषा, आपने सही कहा। यही हमारे श्रोता साथियों को कहना चाहेंगे कि इसके अलावा दालों में कैल्शियम और फॉस्फोरस जैसे खनिज तत्व पाए जाते हैं, जो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में सहायता करते हैं।
0: जी हाँ,
1: बढ़ते बच्चों और बुजुर्गों के लिए ये तत्व विशेष रूप से आवश्यक है। दालों में विटामिन बी समूह भी पाया जाता है, जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है।
0: जी हाँ,
1: यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है।
0: जी हाँ अंजलि जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो कार्यक्रम के माध्यम से हमारे श्रोता साथियों से दालें और शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेकर हम बातें कर ही रहे हैं, तो ये बातें हमारी आगे भी ऐसे ही जारी रहेंगी।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन क्यों ना साथियों के मनोरंजन के लिए हम कार्यक्रम का एक और गीत सुनवा दें।
1: जी हाँ, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: साथियों, इस गीत के बाद हम फिर से रुक करते हैं हमारी बातचीत की ओर। जैसा कि गीत से पहले हमने बहुत अच्छी तरीके से ढेर सारी बातों को जाना, यही आपको कहना चाहेंगे कि दालों में विटामिन बी समूह भी पाया जाता है जो शरीर को ऊर्जा प्रदान करने और तंत्रिका तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क के स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। आजकल मनीषा, कई लोग बाजार में मिलने वाले जंक फूड और पैकेट वाले खाद्य पदार्थों की ओर आकर्षित हो रहे हैं, लेकिन हमें यह समझना चाहिए कि स्वाद के साथ साथ पोषण भी जरूरी है। दालें सस्ती हैं, आसानी से उपलब्ध हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत लाभकारी हैं।
1: बिल्कुल,
0: यदि हम दालों को अनाजों के साथ मिलाकर खाएं, जैसे कि दाल रोटी, दाल चावल, खिचड़ी, तो शरीर को और बेहतर गुणवत्ता वाला प्रोटीन प्राप्त होता है। यही कारण है कि पारंपरिक भारतीय भोजन को संतुलित आहार माना जाता है।
1: जी हाँ,
0: अंकुरित मूंग और चना भी पोषण का उत्कृष्ट स्रोत है। अंकुरित दालों में विटामिन और खनिजों की मात्रा बढ़ जाती है। इन्हें सलाद के रूप में या हल्का उबाल कर भी खाया जा सकता है। श्रोता साथियों, कहना चाहेंगे कि बच्चों को छोटी उम्र से ही दाल खाने की आदत डालनी चाहिए, इससे उनका शारीरिक और मानसिक विकास बेहतर होता है। वहीं बुजुर्गों के लिए दाल आसानी से पचने वाला पौष्टिक भोजन है, क्योंकि मनीषा, स्वस्थ जीवन के लिए केवल पेट भर भोजन पर्याप्त नहीं है, बल्कि पौष्टिक भोजन आवश्यक है। दालें हमें यह सीख देती है कि साधारण दिखने वाली चीजें भी असाधारण लाभ दे सकती हैं। यदि हर परिवार अपनी दैनिक थाली में किसी न किसी रूप में दाल को शामिल करे, तो कुपोषण, कमजोरी और कई स्वास्थ्य समस्याओं से बचाव संभव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हमारे श्रोता साथियों को हम कहना चाहेंगे कि स्वस्थ रहने के लिए केवल दाल ही पर्याप्त नहीं होती। हमारा भोजन है वो भी श्रोता साथियों संतुलित होना चाहिए।
0: जी जी।
1: एक संतुलित भोजन की थाली में अनाज, दाल, अन्य प्रोटीन स्रोत, हरी और रंगीन सब्जियां, मौसमी फल, दूध या दही जैसे खाद्य पदार्थ वो शामिल होते हैं। इसमें श्रोता साथियों अलग अलग पोषक तत्व होते हैं वो हमारे शरीर को प्राप्त होते हैं। हमारी थाली श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि जितनी विविध होगी उसमें अलग अलग पोषक तत्वों को शामिल करना उतना ही आसान होगा।
0: बिल्कुल मनीषा, इसलिए श्रोता साथियों को कह सकते हैं कि अच्छी सेहत किसी महंगी दवा या विशेष भोजन से नहीं, बल्कि सही खानपान की आदतों से बनती है। दालें हमारी परंपरा, हमारी खेती और हमारे स्वास्थ्य तीनों को जोड़ने वाला महत्वपूर्ण भोजन है।
1: जी बिल्कुल।
0: जब हम अपनी थाली में दाल को सम्मान देते हैं, तब हम केवल एक व्यंजन नहीं खा रहे होते श्रोता साथियों, बल्कि अपने शरीर को शक्ति, ऊर्जा और रोगों से लड़ने की क्षमता दे रहे होते हैं। इसलिए हम स्वयं भी पौष्टिक भोजन अपनाएं और अपने परिवार और समुदाय को भी दालें और संतुलित आहार के महत्व के प्रति जागरूक बनाएं, क्योंकि स्वस्थ शरीर ही सुखी जीवन और समृद्ध समाज की सबसे मजबूत नींव है।
1: बिल्कुल अंजलि जी, इसी के साथ हम देखते हैं कि स्वस्थ जीवन के लिए केवल अच्छा भोजन पर्याप्त नहीं है।
0: बिल्कुल,
1: हमें नियमित गतिविधियां, पर्याप्त नींद, स्वच्छ पानी, व्यक्तिगत स्वच्छता और तनाव को संभालने जैसी अच्छी आदतें हैं, उन पर भी ध्यान देना चाहिए।
0: जी जी।
1: श्रोता साथियों कहना चाहेंगे कि दालों को संतुलित भोजन का हिस्सा बनाना हमारे स्वस्थ जीवन शैली की दिशा में एक छोटा सा लेकिन उपयोगी कदम हो सकता है।
0: बिल्कुल।
1: हमें कोशिश करनी चाहिए कि भोजन केवल स्वादिष्ट होने के साथ साथ वो पौष्टिक भी हो और हमारे शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्व भी दे। साथ ही श्रोता साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से कहना चाहेंगे कि दाल हमारे भोजन का साधारण दिखाई देने वाला लेकिन पोषण की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है।
0: बिल्कुल,
1: दालें हमें प्रोटीन, फाइबर, आयरन, फोलेट और अन्य कई पोषक तत्व उपलब्ध कराने में मदद करती है। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक संतुलित आहार में दालों की उचित मात्रा को शामिल करना चाहिए।
0: बिल्कुल मनीषा, हम अपने घरों में ऐसी भोजन संस्कृति विकसित कर सकते हैं जिसमें पौष्टिकता को प्राथमिकता मिले। बच्चों को दालें और पारंपरिक खाद्य पदार्थों का महत्व बताएं, स्थानीय स्तर पर उपलब्ध पौष्टिक अनाज और दालों का उपयोग बढ़ाएं और संतुलित आहार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जब हर परिवार पोषण के प्रति जागरूक होगा, तब हमारा समुदाय भी अधिक स्वस्थ, सक्षम और आत्मनिर्भर बनेगा।
1: जी हाँ।
0: इसी सकारात्मक सोच के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।
1: जी हाँ।
0: याद रखिए श्रोता साथियों कि स्वस्थ जीवन की शुरुआत किसी बड़े बदलाव से नहीं, बल्कि रोज की छोटी छोटी अच्छी आदतों से होती है। आपकी थाली को पोषण से भरिए, अपने शरीर को ऊर्जा से भरिए और अपने जीवन को स्वास्थ्य और खुशहाली से भरिए। इन्हीं बातों के साथ अब कार्यक्रम से विदा लेना चाहेंगे, लेकिन कार्यक्रम के अंत में एक और प्यारे से गीत के साथ क्यों ना मनीषा हम हमारे श्रोता साथियों को मनोरंजन करवा दें।
1: जी बिल्कुल अंजलि जी, तो आइए दोस्तों सुनते हैं इस गीत को।

0: दोस्तों, इस गीत के साथ ही हमारा आज का कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य अब यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आज के कार्यक्रम में हमारे आपसे जो भी बातें रही, गीत संगीत रहे, वो आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे।
1: बिल्कुल।
0: तो श्रोता साथियों, आपको हमारा आज का कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर।
1: जी हाँ श्रोता साथियों, लिख लीजिए हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम हमारा स्वास्थ्य, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कोपड़ा, वागथरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9460051234।
0: इसी के साथ दोस्तों, आप हमारी ईमेल आईडी पर भी अपनी प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है radio@vagdhara.org।
1: तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी इसी कार्यक्रम में, इसी समय, एक नए विषय के साथ में। तब तक के लिए दीजिए अनुमति आपके अपने साथी अंजलि पारश्वर
0: और आपके अपने साथी मनीषा पटेल को।
1: नमस्कार।

0: अगर चाहो तेज दिमाग में स्वस्थ जीवन, तो आयरन की भरपूर तत्व नु करो भोजन। होवे क्योंकि खून में आयरन तत्व की कमी थकी एनीमिया रोग आपड़ा ने थी सके। जल्दी थकान थावी, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, श्वास फूलवू, आ सब एनीमिया ना लक्षण है।
1: होवे भाईन बोनू, आ लक्षण आपड़ा ने आपड़े मई देखाय तो आपड़ा ने आपड़े पाए वाला राजकीय स्वास्थ्य केंद्र मते जाईने एनीमिया ने निःशुल्क जांच करावी सुवे।
0: आंगनवाड़ी केंद्र ने राजकीय स्वास्थ्य केंद्र माते एनीमिया उपचार ने गोरिये निःशुल्क मले है।
1: होवे एनीमिया तकी बचवा बल्ले आपड़ा ने खवाना में दाल, पत्तेदार सब्जी, गुड़, बाजरा, तिल, नींबू ने संतरा, गोभी, तरबूज, आंवला, टमाटर नु सेवन करवो सुवे।
0: होवे आ सब सावधानी राखंगा ने आ सब सब्जी ने दार खंगा तो एनीमिया थकी बची शकंगा।
2: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित

0: पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2,00,000 करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले।
1: मैं रामकर मंडल, ग्राम पंचायत ताराबाद, ब्लॉक मोहनपुर, जिला देवघर, झारखंड का निवासी हूं। मैं पिछले 3 सीजन से अपनी फसलों का बीमा करा रहा हूं। इस योजना से जुड़कर मैं अपने को खुश और चिंता मुक्त महसूस कर रहा हूं। सभी किसान भाइयों से मेरा अनुरोध है कि वे अपना फसल बीमा जरूर कराएं।
2: खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं।
3: बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें।
2: फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1-4447 पर कॉल करें।
4: फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ।
5: दोस्तों, अगर चाहो तेज दिमाग और स्वस्थ जीवन तो आयरन युक्त तत्वों से भरपूर करें भोजन। खून में आयरन तत्वों की कमी होने पर एनीमिया रोग हो सकता है। जल्दी थकान होना, शारीरिक कमजोरी, याददाश्त में कमी, सांस फूलना, ये सभी एनीमिया के ही लक्षण हैं। लक्षण महसूस होने पर साथियों, अपने नजदीकी राजकीय स्वास्थ्य केंद्र में एनीमिया की निःशुल्क जांच जरूर करवाएं। हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना अति गंभीर स्थिति को दर्शाता है। ऐसी स्थिति में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और उचित उपचार लें। वागर रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।
6: भाई ने बोलो, आप एक आरे विचार करियो है कि जैया पेड़ ने छाव में आपने रह हां, या आपने ने कितनी शांति मिले है, जीनी हवा में आपने हाल हां, ई भी आपड़ा थकी कई आश राके है। हो वे अगर पेड़ ने रहेंगा तो आपने हरते जीवंगा, प्रकृति आपड़ी जरूरत नती बल्कि आपड़ी जिम्मेदारी है। एक पेड़ लगाड़ंगा, पानी ने बचाड़ंगा ने आपड़ी धरती ने जीवन दान आलंगा।
7: होवे प्रकृति ने बचावो, भविष्य ने हदारो।
6: होवे आज नाना कदम है, ये अबावरा काल ने बदलाव ने शुरुआत है।
7: वागड़ रेडियो वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: भाई न बोनो, घर तक निकलते वक्त कोई आपनो इंतजार करी रू है। माँ नी दुआ, पिता नी उम्मीद, निसोरनी मुस्कान होवे। इटली गाड़ी धीरे सलावो, हेलमेट पहरो, सीट बेल्ट लगाड़ो। एक नानी सी सावधानी हित्य जिंदगी बचाड़ी लेगा। सड़क सुरक्षा अपनावो, क्योंकि घेरे कोई आपनो इंतजार करी रू है।
1: वागड़ रेडियो एवं वागधारा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

0: थारी में पासो लावो जूनू हवाद, सेहत बनेगा एकदम शानदार। बाजरा, ज्वार, रागी ने मक्का, ताकत भी भरपूर ने पोषण भी पक्कू। बारते नु खवानो सोड़ो, देशी अनाज तकी नातू जोड़ो।
1: मोटू अनाज अपनावंगा, शरीर ने स्वस्थ राकंगा। वागड़ रेडियो एवं वागधरा संस्था द्वारा जनहित में प्रसारित।

साथियों, ये तो थी हमारी आज की सभा, जो कि अब यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आज की इस सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत आप सभी को जरूर पसंद आए होंगे। तो साथियों, आपको हमारी आज की सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम गीत संगीत कैसे लगे, इस बारे में आप अपने राय सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं पत्रों द्वारा हमारे इस पते पर। हमारा पता लिखे, वागड़ रेडियो 90.8 FM, मुकाम पोस्ट कुपड़ा, वागधरा कैंपस, बांसवाड़ा, राजस्थान। हमारा पिन कोड नंबर है 327001। और अधिक जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं साथियों, हमारे इस फोन नंबर पर। हमारा फोन नंबर है 9414082643 पर। तो श्रोता साथियों, फिर मुलाकात होगी अगली सभा में। तब तक के लिए दीजिए आज की इस सभा से जाने की अनुमति आपकी अपनी दोस्त कशिश पारशर को। इसी अनुमति के साथ नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल।